0: वंदे मातरम।
1: शस्य शाम

भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार

0: जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार रिले करी प्रचार करलो आकाशवाणी दिल्ली रो। आकाशवाणी बारिपदा आरंभ करुछु भक्तगीतार कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रमर प्रथमरे कंठशिल्पी लोपिता मिश्र, कंठरे गुरुकृष्ण गोस्वामी गीत रचना।

0: प्राप्तं सहैव भारतस्य पदक संख्या द्वादश जाता यस्मिन् एकं सुवर्णं पञ्च रजत पदकानि तथा षट् कांस्य पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: हिंदी रे समाचार लेकरी प्रचार करलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा आज आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना शुणु सकाल 7:25 प्रचार करू शांति आखिला कार्यक्रम सुगम संगीत शुणीपरिवे सकाल 7:55 कार्यक्रम गीतांजलि प्रचार करू सकाल 8:15

0: वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वही आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति

0: यात्रियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है।

0: खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सरताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सरताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रुशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: श्रोता बंधु चाहिए कार्यक्रम रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा आरंभ करुछु गीतांजलि कार्यक्रम। श्रोता बंधु निर्जीव कागज रे थाए सजीवर चिंता चेतना।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लवयापा इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची ने संगीत पर।

चिड़िया इस फिल्म का गीत दिव्य कुमार की आवाज में। मेहरान अमरोही ने इस गीत को लिखा है और शैलेंद्र बर्वे ने संगीत पर किया है।

परम सुंदरी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। सचिन जिगर ने इसे संगीतबद्ध किया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य गायक कलाकार।

कौशल मुनि का लिखा गीत और सचेत परंपरा ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। रेज 2 फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इससे पहले जो गीत आपने सुना था उसे आवाज दी थी विशाल मिश्रा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरमान खान का गाया स्नेहा शंकर के साथ में ये गीत। कौशल किशोर ने इसे लिखा है, विशाल मिश्रा ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम हक।

0: रेट्रो फिल्म का गीत हृदय गट्टानी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रकीब आलम ने इसे लिखा था और संतोष नारायणन ने धुन बनाई थी। और ये गीत था कार्यक्रम चित्रलोक का लोक की आखिरी प्रस्तुति।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, पूजा नारानिया को नमस्कार।

0: कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर बाद।
1: आकाशवाणी दोस्तों, मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबाब अहमद और हम लेकर आ गए आपके लिए सुबह 9:30 ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 की लाइव अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कैसी रही। सबसे पहले द बेस्ट न्यूज

0: day that came in early in the morning was from the world of wushu. Roshibena Devi ne women 60 kilogram final mein Bharat ko aur apne liye silver medal jeet liya. Ji haan, she completed a hat-trick of medals in the Asian Games. Aapko yaad dila de ki Roshibena Devi ke naam 2018 mein bhi bronze medal reh chuka hai, 2022 mein wo silver padak se bhi sammanit kari ja chuki hai aur uske sath ab 2026 mein unhone silver medal apne naam kar liya. She took the silver medal in the women's Sanda 60 kilogram category after a hard-fought battle against China's Jiao Zhang. The best news of the day, Shabab ji.
1: Yeah, bilkul. Aaj ka din zyada intezar nahi karna pada, balki ye kaha jaye ki bahut sare bhartiya khel premiyon ke uthne se pehle, jagne se pehle ek padak aa gaya tha aur ye padak dilaya tha kyunki zyada pratiksha karni nahi padi. Din ki bohni karai Satnam Singh aur Salman Khan ne purush doubles एकलस में कांस्य पदक के साथ ये बोनी कराई. इस वर्ग का जो स्वर्ण पदक चीन और रजत उज्बेकिस्तान के हिस्से में गया. सत्ताम और सलमान 500, 1000 और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर चल रहे थे. इस दौरान वो चीनी जोड़ी से आधे सेकंड से मात्र पीछे रह गए. वो काफी निराशाजनक रहा था वो सीन, लेकिन अंतिम चरण में आखिरकार पिछड़ गए. वो जो आधा मिनट का जो समय था वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो चरण था उसमें ये पिछड़ गए.
0: सही बोला आपने शबाब. और हम आगे बढ़ेंगे एथलेटिक्स की दुनिया से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे हैं. हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स में अनामिका अनीश फिनिश्ड 5th इन लास्ट इन हीट विद अ टाइम ऑफ 14.80 सेकंड्स अर्निंग 868 पॉइंट्स. जापान की यूरी तनाका टॉप्ड द हीट क्लॉकिंग 13.99 सेकंड्स टू कलेक्ट 980 पॉइंट्स. वहीं मिक्स 4 into 400 मीटर रिले हीट में मनुटी हैज पुट इंडिया इन द थर्ड बिफोर एमआर पूवामम्मा रैन अ ब्रिलियंट सेकंड लेग टू टेक द लीड. जयकुमार मेंटेन द एडवांटेज डिस्पाइट चाइना एंड यूएई क्लोजिंग इन एंड आफ्टर स्लाइटली स्लो एक्सचेंज एंकर किरण पहल हेल्ड द फ्रंट पोजीशन इनटू द फाइनल लैप. चाइना मेड अ लेट सर्च टू पिप इंडिया एट द लाइन बट द इंडियन टीम सेफली क्लिंच्ड द सेकंड प्लेस टू बुक देयर स्पॉट इन द फाइनल विद अ टाइमिंग ऑफ 13 minutes 16.23 seconds. और women's heptathlon high jump में भी अनामिका अनीश ने finally एक strong recovery करके in high jump cleared a best height of 1.74 meters to finish second in the event and gathered 903 points. जी हाँ, पूजा cleared 1.71 meters to finish joint fourth, adding 867 points to her tally. The performance gives both the Indian athletes a significant boost in their overall standings because ab Anamika hai 6th place par 1771 points ke saath aur Pooja hai 9th place par 1761 points ke saath. Shabab,
1: yeah, bilkul. Udo Mega Pradeep ki baat kari to mahila कैनो सिंगल्स में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है. 200 मीटर के सेमीफाइनल में वो चौथे स्थान पर रही हैं मेघा प्रदीप. सेमीफाइनल के शीर्ष तीन खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचती हैं, इसलिए मेघा का फाइनल में पहुंचने का जो प्रयास था, अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया.
0: राइट. और आपको स्विमिंग की दुनिया से भी थोड़े अपडेट्स देने वाले हैं, पर वहां पे ज्यादा कुछ हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि स्विमिंग में हमने देखा कि मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट के अंदर भारत के बेनेडिक्ट बेनेस्टन फिनिश्ड 5th इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स. ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल. वही मेंस 4 into 100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट्स में इंडिया भारत की तरफ से बेनेडिक्ट Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. Men's 800 meter freestyle, maybe, humne dekha Aryan Nehra finished third with a timing of 8 minutes 2.52 seconds, touching the wall 5.13 seconds behind Vietnam's Nguyen Hoi Hong. Aur iske saath hi Nehra did not leave this event with a podium placement also. Nirashajanak khabar swimming ki duniya se, Shabab?
1: Haan, udhar agar nishanebazi ki baat kare to बहुत अच्छी खबर उसमें नहीं है, क्योंकि कमलजीत ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल जो क्वालिफिकेशन था उसमें 580 अंक ही प्राप्त करे और उसके साथ सातवां स्थान उन्होंने हासिल किया. हालांकि उन्होंने फाइनल में इसके जगह जरूर बनाई. वही आकाश भारद्वाज 579 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है और केवल एक अंक से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए.
0: जी, अपडेट्स तो हम लगातार आपको हर घंटे लाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस अपडेट से आपसे अभी के लिए विदा ले, आपको बता दें कि मेडल टैली में भारत की अभी स्टैंडिंग और कितने मेडल्स भारत आज अभी कमा चुका है. मेडल टैली में हम बात करेंगे तो भारत की पोजीशन है 14th. कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त है 14 मेडल, एक गोल्ड, जो कि

क्रिकेट की दुनिया से महिला क्रिकेट टीम ने हमें दिलवाया था। 6 सिल्वर आ चुके हैं जिसमें से 4 शूटिंग में आए, 1 वेटलिफ्टिंग में, 1 वुशु में। 7 ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं जिसमें से 3 शूटिंग में है, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, 1 सॉफ्ट टेनिस में है, जो कल जयमीना लेके आए थे, विद हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड इन सॉफ्ट टेनिस बिकॉज ये पहला मेडल है इस तरह के स्पोर्ट के अंदर भारत का। 1 बैडमिंटन में ब्रॉन्ज आया और आज 1 रोइंग में भी ब्रॉन्ज आ गया। तो कुल मिलाकर 14 मेडल्स अभी तक, 14th पोजीशन पर है भारत। उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी इस मेडल टेबल के अंदर पोजीशन को और ऊपर बनाएगा, यानी धीमे धीमे करके ऊपर क्लाइंब करेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है शाबाब अहमद। हमें दीजिए इजाजत, जुड़ेंगे आपके साथ सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से। थैंक यू।

दोस्तों, इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा, ऐसी ही कुछ फिल्में।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

0: आदमी और इंसान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए फिरोज खान को अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। फिरोज खान ने अपना फिल्मी करियर 1960 से शुरू किया फिल्म दीदी के साथ। 1975 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, नाम किया। मैं शादी करने चला ये फिल्म आई थी 1962 में। इसी साल यानी 1962 में आई थी रिपोर्टर राजू।
1: रात झूमती, रात झूमती, दिल को चूमती, दिल को चूमती।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफी साहब का गाया हुआ गाना है, जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है, बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने 3 फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा

खान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइस द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रियमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का उनका

सन 2009 में कैंसर जैसी बीमारी से लोहा लेते हुए उन्होंने इस दारे फानी पर विदा कहा।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सुनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में

साल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଗୀତ ଗୀତିକା ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ନାଟକ
1: परमो धर्म यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।
2: हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ

रूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सलमान सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक दिलाया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने आशा भाई और सुमन जी को देखा?
1: देखा है, बिल्कुल देखा है। उस टाइम मुझे इतना मालूम नहीं था, इतने बड़ा कलाकार है, मुझे नहीं मालूम था।
0: आप तो छोटे थे,
1: 12 साल का 14 साल का था
0: जी।
1: तो उनके साथ मैंने बजाया भी है, सुमन ताई के साथ। उनके जो रिहर्सल चलती थी
0: जी,
1: तो रिहर्सल्स में मुझे बजाने को बोलते थे। जिस चित्रपट में सुमन ताई गाई थी, वो चित्रपट का संगीत संयोजन अनिल मोहिले जी ने किया। तो अनिल जी मुझे बोलते थे रिहर्सल में तुम बजाओ। तो उस हिसाब से मैंने उनके साथ बजाया।
0: अच्छा, आपके हाथ में वायलिन किस बरस की उम्र में दे दिया गया?
1: मैं शायद 12-13 बरस का था,
0: तब से बजा रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर जी थे वायलिन के, वो मेरे पिताजी के असिस्टेंट थे, प्रभाकर
0: जी।
1: तो मेरे पिताजी ने उनको बोला, अरे इसको हारमोनियम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वायलिन भी सीखना चाहिए उसने, और कुछ सीखना चाहिए। तो उनके साथ मैंने वायलिन उनके पास मैंने सीखा।
0: कितने साल तक सीखते रहे?

0: 7-8 बरस तक मैंने सिखाए, 70-71 तक मैंने वायलिन का रियाज चालू रखा था।
1: और पिताजी हारमोनियम सिखा रहे थे?
0: हाँ, तो ये पहले गुरुजी मेरे पिताजी।
1: कितने सख्त थे वो?
0: नहीं, बहुत प्यारे थे
1: जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया हारमोनियम का जिक्र, वायलिन का जिक्र, पर आप तो अकॉर्डियन भी बजाते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ?
0: ये एक्चुअली क्या हो गया, मैं 72 में बीए जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया।
1: ओ।
0: और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए, तो फिर पूछा घर में कि ये क्या करते हैं। तो मेरे मास्टर जी थे, वो बोले हारमोनियम बजा लेता है, मेरे पास वायलिन सीखता है। तो फिर वसंत देसाई बोले कि हाँ हारमोनियम बजा लेता है, तो उसको फलाना फलाना डेट को मेरे पास भेजो। और फिर उधर गया, मैं पास हो गया, उनके हिसाब से पास हो गया। फिर 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: गजब।
0: हाँ, तो उधर क्या हुआ कि लोग आते थे, यानी जयवल कुलकर्णी है या तो शरद जांबेकर, प्रमिला दातार, फैया जी, वाणी जयराम, तो जयवल कुलकर्णी, उनके साथ जयवल जी के साथ मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। और उनके साथ जो अकॉर्डियन बजाता था सूरज साठे नाम का,
1: सूरज साठे बहुत
0: बढ़िया बजाने वाला
1: जी, जी।
0: तो जब मैंने उसको देखा तो बोली ये साज बढ़िया है, उसमें क्या इफेक्ट मिलता है प्रोग्राम में ये वो, तो मन में कुछ ले लिया। तो फिर मैं 74 को अकॉर्डियन खरीद लिया।
1: अरे बाबा।
0: तो फिर 78 से मैं बार बजाने लगा सीख के।
1: अच्छा।
0: तो पहले मैंने ऑडिशन भी दी थी रेडियो की।
1: अरे बाबा।
0: 78 में मैं ऑडिशन पास हो गया रेडियो के।
1: जी जी।
0: हाँ, तो वहां से फिर अकॉर्डियन शुरू किया। तो शायद 80-82 तक, जब तक मैं कीबोर्ड नहीं मेरे पास आया तब तक अकॉर्डियन बजा रहा था।
1: मैंने एक और चीज जो पढ़ी आपके बारे में कि कॉलेज रुइया में पढ़े आप, और पढ़ाई करने तक आपके मन में ये तय नहीं था कि जीवन में आगे क्या करना है?
0: बिल्कुल। जब मैं 72 में वसंत देसाई के आ गया,
1: हाँ,
0: तो मेरा फाइनल हो गया कि मैं करियर करूंगा तो इसमें करूंगा।
1: और ये बैंक वाला मामला क्या था?
0: बैंक की परीक्षा देनी पड़ती थी ना।
1: हाँ, तो आपने बहुत मेहनत की, तैयारी की उसकी?
0: तैयारी की थी, लेकिन बिकॉज मेडिकली अनफिट हो गया मैं।
1: जी जी।
0: मेडिकली तो 2-3 बैंक में ट्राई किया तो बोले ये तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं इधर। और ये मौका मिल गया वसंत देसाई जी के उधर जाने का, तो वहां से फिर हो गया कि मैं म्यूजिक करूंगा।
1: वाह। वसंत देसाई का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का एक गाना अपने सुनने वालों को सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल।
1: वसंत देसाई की याद के नाम।
0: बिल्कुल।
1: ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ठीक है।

0: अप्पा वढ़ावकर जी से बातें हो रही हैं और अप्पा आप बता रहे हैं कि वसंत देसाई जी ने आपको अपनी निगेवानी में ले लिया और आप कुछ साल तक वहाँ बजाते रहे। वसंत देसाई से जुड़ी कुछ यादें हमें बताइए, क्योंकि आपकी उम्र तो कम थी उस वक्त और वो बहुत बड़े संगीतकार थे।
1: बरोबर। तो मैं एक कैंपेन था गवर्नमेंट का, एक सुर एक ताल नाम।
0: हाँ,
1: ये उसका ये तो मोटो ऐसा था कि समझो कि पाठ्य पुस्तक के जब मराठी पाठ्य पुस्तक है, तो समझो एक कविता है देवा तुझे कितनी सुंदर आकाश। तो ये जो कविता है, तो उस टाइम क्या होता था कि समझो कि बालमोहन स्कूल का म्यूजिक टीचर है, वो अपने हिसाब से उसकी ट्यून बनाता था। पार्ला का एक आधा स्कूल है तो उसके हिसाब से वो मास्टर ट्यून बनाएगा। छाना पूना ऐसा जो अलग अलग ट्यून बनते थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कुछ। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो गाने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की, कैंपेन चालू किया कि एक सुर एक ताल, यानी कि किधर का बच्चा भी एक साथ आए और एक कविता गाने को बोले, तो एक ही ट्यून में गाए एक ही ताल में गाए।
0: क्या बात है।
1: तो ये कैंपेन में मैंने 8 वर्ष काम किया हूँ।
0: और वसंत देसाई के साथ फिर महाराष्ट्र के गांव गांव
1: जिले गांव में हम लोग घूमते थे
0: जी।
1: और उधर क्या होता था कि वो क्या बोलते हैं शिविर कैंप जो होता था, वो समझो कि सोलापुर में गए हम लोग, तो उस एरिया के म्यूजिक टीचर्स उधर बुलाते थे
0: जी।
1: समझो 2-250 लोग होंगे, वो गाने सीखेंगे 3 दिन में, जो कुछ होगा 3-4-5 गाने जो होगा वो आप अपने स्कूल में जाके सिखाएंगे अपने बच्चे को, और फिर एक बड़ा सेमिनार लेके वो गाने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कैसा क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा कैंपेन था एक्चुअली, मास सिंगिंग बोलते हैं उसको।
0: वाह वाह। और
1: समूह गान
0: पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में ये एक
1: मेरे ख्याल से मेरे इसमें वही मालूम है कि महाराष्ट्र में ये हुआ था।
0: उसी दौरान क्या वसंत देसाई ने महात्मा गांधी का एक भजन कंपोज किया था, हे नम्रता के सागर, आपको कुछ याद है?
1: वो एक्चुअली भजन नहीं है
0: जी,
1: वो एक्चुअली कहावत है ऐसे कि वो गांधी जी ने जेल में एक पत्र लिखा था।
0: यस।
1: और पत्र को वसंत देसाई जी ने वो ट्यून बना के जैसा लगता है गाना ही है,
0: मन्ना डे ने गाया
1: था। बहुत अच्छा तर्ज उसका हुआ था।
0: तो आप उस वक्त वसंत देसाई के साथ थे?
1: नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं था
0: जी।
1: मैं जाने के पहले वो रिकॉर्ड हुआ था।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि वसंत देसाई के साथ इतना ज्यादा अनुभव आपका है और वो एक बहुत ही अप्रतिम संगीतकारों में से रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं याद आती हैं जिनका जिक्र आप करना चाहें?
1: एक्चुअली एक बात मेरे बारे में, इतना मैं लकी हूँ
0: जी
1: कि मेरे जो चित्रपट के जो पहला गाना, यानी समझो कि हिंदी का पहला गाना जो मैंने बजाया
0: जी
1: एज अ म्यूजिशियन
0: जी,
1: वो वसंत देसाई का म्यूजिक।
0: वाह।
1: शक नाम का चित्रपट था।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: शबन आजमी विनोद खन्ना वगैरह काम।
0: हाँ, हाँ, हाँ। वो गाना कौन सा था?
1: वो अभी ना पर्दा गिराओ करके।
0: वाह वाह वाह। जेके बनर्जी ने गाया था।
1: यस, काका जी हम लोग उसके बोलते थे
0: जी।
1: तो वो गाना बजाने का मुझे मौका मिल गया, वो वसंत देसाई का था।
0: गुलजार साहब के बोलते अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो की दास्तां अभी और भी है।
1: क्या बात है। मराठी का पहला चित्रपट गाना मैंने वसंत देसाई साहब का बजाया।
0: क्या बात है।
1: और वो गायक कौन था? तो पंडित भीमसेन जोशी जी।
0: ओ
1: भारत रत्न।
0: वाह वाह वाह।
1: इतना अभी ये आते कांटा रोंचा आते मुझे
0: जी। तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तनाव था?
1: तनाव तो था, क्योंकि इधर का भी पहला रिकॉर्डिंग उधर। अच्छा, पहले हिंदी का इतना तनाव ना था क्योंकि हमें रिहर्सल बहुत किए थे वो काका जी के साथ
0: जी,
1: कम से कम 15 रिहर्सल किए थे।
0: वाह।
1: लेकिन और क्या, वो रिकॉर्डिंग ऐसा हेडफोन लगा के मैंने बजाया था
0: जी
1: काका जी का, पर लेकिन पंडित जी का जो गाना बजाया मराठी का,

0: चाचा सामने पंडित जी बैठे, मैं इधर बैठा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: वो गा रहे हैं और क्या उनका आवाज,
1: कंठ क्या गजब,
0: बढ़िया बढ़िया
1: है ना। गाना याद है कौन सा था वो?
0: वो रात्रन दिन अम्मा युद्धाचा प्रसंग।
1: अब गा के बताइए।
0: रात्रन दिन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रन दिन आमा युद्धाचा प्रसंग। आगे का वर्ड आता नहीं, ये चंद्रकोंस में बांधी हुई चीज थी।
1: वाह,
0: और बढ़िया गाया था।
1: क्या बात है, सुंदर याद आपने हमारे साथ साझा की है। और चूंकि शक फिल्म के गाने का जिक्र किया है,
0: हाँ,
1: तो वो गाना सुन लेते हैं।

0: बहुत सुंदर बातें आपके साथ हो रही हैं अप्पा जी, और आप आगे चलकर म्यूजिशियन से म्यूजिक अरेंजर कैसे बने ये कहानी हमें बताइए।
1: पहला म्यूजिक अरेंजर ऐसे काम किया तो मैंने स्टेज पे किया था
0: जी।
1: तब क्या हुआ कि एक मैं एक ग्रुप कर रहा था, तब वैसा मैं थोड़ा सा इधर काम किया, वसंत देसाई के साथ, उसी रामचंद्र के साथ काम किया, तो थोड़ा सा मैं सीनियर था उनमें, और नोटेशन मुझे आती थी और उन लोगों को कुछ नोटेशन नहीं आता था। तो अचानक वो जिम्मेदारी मुझे पड़ गई कि इनको सब संभालो एक साथ, तो अरेंजर उधर ऐसे ही बन गया। तो फिर बाद में क्या होगा कि मैं सोचता था कि अरे मतलब क्रेडिट्स में मेरा नाम नहीं आता था, और सिंगर्स के नाम आते, वो इधर इसका नाम आया उसका नाम है, म्यूजिक अरेंजर का नाम नहीं। तो मैंने सोचा कि चार सिंगर है वो पांच पांच छह छह गाने बिठाएंगे गाएंगे, लेकिन मेरे को 25 गाने बिठाने पड़ते हैं
0: जी,
1: और वो सब म्यूजिशियन से काम करना लेना, तो मेरा काम भी ज्यादा है ना।
0: हाँ।
1: तो क्रेडिट्स में आना चाहिए नाम, तो मैं करते गया कि हमारा भी नाम आना चाहिए आना चाहिए, तो तब से वो नाम आने लगा। तो ये क्रेडिट मैं लेता हूँ कि ये मेरे से शुरू हुआ,
0: म्यूजिशियंस के नाम आने जो है उसकी कोशिश अरेंजर का बहुत बड़ी बात।
1: वहां से फिर किसी ने सुना कि लड़का अच्छा काम करता है, तो किसी ने मेरे को, पहला तो दूरदर्शन मैंने बहुत बजाया
0: जी जी,
1: और वहां तक कुछ नाम नहीं, लेकिन क्या समझो कि यूनुस भाई आए, तो समझो शब्दांचल पल्लेगढ़ का कार्यक्रम होता था, पांच गाने हैं, तो आपने दो गाने का किया अरेंजमेंट और तीन गाने का, फिर वो प्रोड्यूसर बोलेगा अरे अप्पा जरा ऐसे करुण टकना अरेंजमेंट जरा, तो फोकट का अरेंजमेंट करते हो, तो अलग का पैसा नहीं मिलता वो फोकट का, तो ऐसा अरेंजर बन गया था मैं 77 को।
0: अच्छा, एकदम
1: दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम मैंने 74 में बजा है वसंत देसाई के साथ।
0: अच्छा। हाँ। वहां उन्होंने क्या परफॉर्म किया?
1: वो एक शिवराज्य अभिषेक हुआ था, 300 शिवराज्य अभिषेक 74 में।

0: जी जून 74
1: जी,
0: तो रायगढ़ पर वसंत देसाई जी ने एक गाना सादर किया था, उसका रिकॉर्डिंग उधर हुआ था
1: दूरदर्शन,
0: दूरदर्शन तो वो पहला उधर भैया है मैंने
1: जी। और उसके बाद आप धीरे धीरे अरेंजर बनते
0: हैं। हाँ, पहला कैसेट मैंने बजाया होगा जब कैसेट का जमाना आएगा 79-80 को
1: जी,
0: तब से मेरा वो चालू हो गया काम।
1: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सुधीर फड़के हो या स्नेहल भाटकर हो या फिर वसंत देसाई हो, यशवंत देव हो, इन सब के साथ आपने काम किया है, तो कुछ यादें हमारे साथ बांटिए।
0: एक तो वसंत देसाई के साथ मैंने अरेंजमेंट का काम कुछ नहीं किया, उनके पास सेबेस्टियन जी
1: वहां पर बजाते थे,
0: लेकिन उनका मैं देख रहा कि उनका जो पेशेंस था ना
1: जी,
0: बढ़िया पेशेंस था, यानी कि समझो गाना सिखाया और अभी आशा जी और ये छोड़ दो, लेकिन जो स्कूल में हम लोग जाते थे ना सिखाने को, एक सुर एक ताल, एक गाना वो एक लाइन 10 बार 12 बार बोलते थे कि मैं सिखाने को तैयार हूँ, तुम सीखने को तैयार हो जा। वो कंटालते नहीं थे, वो बहुत पेशेंस था, वो पेशेंस जो चीज है, और वक्त पे जाना।
1: वाह,
0: 9 बजे का रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम, वो 9:45 बजे वसंत देसाई जी स्टूडियो में हाजिर थे।
1: वाह,
0: वो एक अच्छा, मुझे ये लगा कि टाइम पे जाना चाहिए, ये दो चीजें वहां से अच्छी मिल गई मुझे। यशवंत देव के पास में जब गया, जो उनका पहला अरेंजमेंट का काम मैंने किया, तो उनका एक आदत था कि वो गाने का नोटेशन लिखते थे और वो ताल में बार टू बार लिखते थे नोटेशन, तो सब गाने मैंने उस टाइम क्या करता था, मैं थोड़ा सा आग की वजह से मैं उधर लिखता नहीं था, वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके लेता था सब गाने, तो उनके गाने मैंने रिकॉर्ड कर लिए, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट भी दे दी गाने की, अब तुम्हारे लिरिक्स की और उसके नीचे नोटेशन लिखा हुआ
1: जी।
0: तो मैं बोला कि मेरे पास अभी गाने हैं ना रिकॉर्ड किए, तो ये क्यों चाहिए मुझे। तो बोले नहीं, जब तुम समझो कि 4 अंतरे का गाना है, पहला तीसरा इसके ट्यून सेम है, 1-3 और 2-4 ट्यून सेम है, लेकिन ऐसा मत करना कि फर्स्ट अंतरे का जो म्यूजिक बजाएंगे आप वही थर्ड को बजाना, क्योंकि फर्स्ट अंतरे का कंटेंट और थर्ड का कंटेंट अलग हो सकता है। फर्स्ट में हैप्पी होगा तो थर्ड में दुखी भी हो सकता है।
1: लेकिन आमतौर पर लोग यही करते थे कि M1 जो है वो M3 में डालते थे, M2 M4 में डालते थे।
0: तो पहले ऐसा ही करता था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा मत करना, स्क्रिप्ट सामने रखो, उसका अर्थ मीनिंग समझा लो, अगर सेम जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर मीनिंग डिफरेंट है तो तुमको दूसरा अगला कुछ करना पड़ेगा।
1: वाह,
0: तो तब से जो मैंने मेरे में सुधारणा की एज फार एज पॉसिबल,
1: ये उनकी बदौलत हुआ।
0: हाँ यस, उनका जो एक शब्द प्रदान गायकी, यानी शब्दों के हिसाब से उच्चारण होना चाहिए, उनका एक खासियत है यशवंत देव साहब का, उस हिसाब से मेरा शब्द प्रधान म्यूजिक अरेंजमेंट ऐसा हो गया उस टाइम से।
1: क्या बात है, सुधीर फड़के की कोई याद बांटिए।
0: अरे सुधीर फड़के का तो बहुत है, उन्होंने एक ही पिक्चर का हम लोग अरेंजमेंट किया उनका, मैं और सुराज साठे। तो ये गाने के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे, उनके घर में ही बैठे थे
1: जी,
0: मैं और उनका बेटा श्रीधर
1: जी।
0: तो गाने का हम लोग के हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया, ऐसा हम लोग का लगा। तो बाबूजी को बोला कि सुनिए, उसको पास कर दीजिए, ओके कर दीजिए, या तो उसका फाइनल नोटेशन लिखने में जरा। तो उन्होंने आग बंद करके वो हमारे अरेंजमेंट जो कुछ है वो सुन ली, बोले बहुत बढ़िया किया है। हमको लगा कि यार क्या शाबाश की मिल गई हम लोग को। लेकिन बाद में बोले, इसमें मेरा गाना किधर है।
1: अरे बाप रे,
0: तुम्हारी अरेंजमेंट ऊपर जा रही है, मेरे गाने
1: के ऊपर चढ़ गई है
0: ना, मेरा गाना गया किधर।
1: अरे अरे अरे,
0: तो मेरा गाना नहीं है, तो ये गाने के लिए ये नहीं चलेंगे, ये और किसी के गाने को लगाओ आप। इसके लिए अलग टाइप, थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, ये टाइप करो। तो फिर बाद में हम लोग
1: पूरा काम फिर से किया।
0: हाँ, तो ये मिल गया ना।
1: हाँ,
0: कि बाबा गाने पे चढ़ना नहीं चाहिए,
1: सपोर्टिंग चाहिए। क्या बात,
0: तो इतने बड़े आदमी है वो क्या।
1: बल्कि आपने तो श्रीधर फड़के के साथ भी काम किया है।
0: हाँ, उनका ओंकार स्वरूप सुरेश वाडकर ने गाया हुआ
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट
1: एकदम।
0: तो उसका पूरा अरेंजमेंट मेरी है।
1: क्या बात है, और वो तो बहुत आज भी घर घर में बजता है।
0: हाँ, और उनका श्रीधर जी का और एक बढ़िया एल्बम आशा जी ने गाया।

0: ऋतु हिरवा नाम का
1: जी जी,
0: तो एक्चुअली वो एल्बम का पूरा अरेंजमेंट श्यामराव कांबळे करने वाले थे।
1: हाँ हाँ,
0: बड़ा अरेंजर तो, लेकिन चार गाने को उन्होंने अरेंजमेंट करके हमको दिल लिख के दिया, उधर भी मैं और सूरज।
1: अरे वाह,
0: क्योंकि एक बार मैं भूल गया बोलना, पहला अरेंजमेंट हम लोग ने किया ना जो
1: जी,
0: तो एक साथ किया हम लोग ने उज्जवल सूरज नाम से।
1: अरे वाह वाह,
0: फिर बाद में अलग अलग करने लगे, पर
1: क्योंकि जो आपका मूल नाम है आपको
0: उज्जवल, हाँ मेरा नाम उज्जवल है
1: जी,
0: और उसका सूरज।
1: वाह वाह,
0: तो उज्जवल सूरज नाम से हम लोग ने काफी काम किया।
1: लेकिन कितना सुंदर है उज्जवल सूरज।
0: और ये मौका हम लोग पहला अरेंजमेंट का मौका हमको दिया कवि शांताराम नांदगांवकर, मराठी के जाने माने कवि है
1: जी,
0: शांताराम नांदगांवकर जी।
1: अच्छा,
0: उनका एक कुछ टीवी का काम था जिसमें सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति ऐसे लोग गाने वाले थे, अनुराधा पौडवाल वगैरह।
1: हाँ हाँ,
0: उसमें ये गाना इन्होंने भी गाया था, यशोदास ने भी गाया था।
1: वाह,
0: तो वो पहला मौका उन्होंने दिया, तो ऐसा तो काम चलते रहा
1: जी। बल्कि मुझे ये पता है कि आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में आपने चार बड़े आयोजन बजाए।
0: हाँ, चार बड़े फुल प्रोग्राम, यानी कि
1: साढ़े तीन घंटे के,
0: साढ़े तीन घंटे के, यानी पहला में 11 बजे परेल का दामोदर हॉल है।
1: नहीं, लेकिन मुझे इसकी पूरी भूमिका बताइए, ये कैसे हुआ कि एक ही दिन में इतने सारे कार्यक्रम होने लगे।
0: मेरा एक साथी है बजाने वाला, जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बजाता है, रिकॉर्डिंग नहीं बजाता है, अनिल गोसावी नाम, तो मुझे बोलता था आज भी 300 बाजू ले।
1: हाँ,
0: मैं बोला 300 कैसा बजा सकता है, रिदम वाला है उसका, स्टेमिना क्या होता है, तो मुझे भी कभी मौका मिले
1: जी
0: तो मैं भी बजा लूं। तो एक दिन मौका आ गया कि 11 बजे परेल में, 3 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर, अलग अलग प्रोग्राम।
1: हाँ,
0: यानी कि सप्तरंग नाम का प्रोग्राम 11 बजे बजाया।
1: हाँ,
0: 3:30 बजे अशोक हांडे का मंगल गाणी दंगल गाणी नाम का बड़ा
1: बहुत मशहूर। हाँ,
0: फिर 8:30 बजे अरुण डाते और अनुराधा पौडवाल।
1: हाँ,
0: उनका शुक्र तारा बजाया, और रात को 1:30 बजे वो हमारे पास एक उत्सव होता है साई बाबा का
1: जी,
0: और हिंदोले स्वरण से नाम का बड़ा प्रोग्राम बजाया
1: एक ही दिन में।
0: हाँ, हाँ, और सबके संगीत संयोजन, तीन प्रोग्राम के संगीत संयोजन मेरे थे।
1: टेंशन नहीं हो रही थी यहाँ से वहां भागना है, ट्रैफिक है ये सब?
0: तब इतनी, अभी ये 91-92 की बात है
1: जी जी,
0: तब इतनी सारी भीड़ भी नहीं थी वैसे, और साथ में एक म्यूजिशियन की गाड़ी थी जो कॉमन था मेरे साथ। तो वो आसान हो गए। तो उस दिन एक दिन में मेरे ख्याल से मैंने 130 गाने बजाए।
1: अरे बाप रे, एक दिन में 130
0: गाने बजाए, और वो विदाउट एनी नोटेशन, वो सब हाँ, बाहर नोटेशन, क्योंकि मुझे का नोटेशन पढ़ने को इतना लंबा का दिखता नहीं है
1: जी जी,
0: तो वो सब मुझे मेमोराइज करना पड़ता है।
1: ये तो और कमाल की बात है। हाँ, कि इतना सारा आपने सब कुछ आपकी स्मृति में रह गया।
0: एक बरस तो मैंने हमारे मराठी में जो विसुभाव बापट नाम के है
1: जी जी,
0: तो एक ही स्टेज पे मैंने एक दिन में 5 बजे फुल घंटे पूरा।
1: अरे
0: रविंद्र नाट्य मंदिर में पहला शो सुबह 6:30 बजे।
1: हाँ,
0: दूसरा 9:30 बजे।
1: हाँ,
0: तीसरा 3:30 बजे, चौथा 6:30 बजे, और पांचवा रात 9:30 बजे।
1: अरे बाप रे,
0: स्टेज पे फुल
1: स्टैमिना कहाँ से लाते हैं आप?
0: तब था ये भी 20-30 बरस पहले के बाद।
1: क्या बात,
0: अपने आप को मैं ये देखता था कि मैं बजा सकता हूँ क्या।
1: हाँ, आप चुनौती देते थे?
0: मुझे ही देता तुम बोला कि फिजिकली थोड़ा सा थकान होती है
1: जी। हमने सुधीर फड़के जी को याद किया, तो उनका एक गाना सुनते हैं,
0: ज्योति कलश सुनिए।
1: बिल्कुल वही सुनेंगे, ज्योति कलश।
2: ज्योति कलश चलते
3: एशियन गेम्स की हलचल की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूँ शबाब अनवर, और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। आज सुबह बहुत अच्छी हुई थी भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो, जिस प्रकार से रोशबीना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल दिलाया, और उसके बाद सतनाम और सलमान की जोड़ी ने हमें रोइंग में मेडल दिलाया, लेकिन उसके बाद जो एक घंटा गुजरा है वो सन्नाटा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का नहीं रहा है, काफी ज्यादा उम्मीदें निशानेबाजी में भारत को हर इस तरह के मल्टीपल इवेंट में रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है। निशानेबाजी से हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत इस बात की है कि अनंत जीत सिंह नारू

0: आज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने स्किट मिक्स टीम के फाइनल में जरूर जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना बहुत ही मजबूत दक्षिण कोरिया, कतर और चीन से होने वाला है। भारत ने 138वें कुल में स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय जोड़ी ने तीन सीरीज में 44, 47 और 47 का स्कोर किया था। उधर भारत की पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में काफी निराश किया है और ये टीम चौथे स्थान पर रही है। अगर कहा जाए तो दिलदारिंग उचुकांकर ने 568 अंक बनाए और व्यक्तिगत स्पर्धा में 35वें स्थान पर है और वो जो उनका जो लचर प्रदर्शन था उसके कारण ही भारत जो था वो तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया।
1: जी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गिव यू क्विक अपडेट्स ऑन टेबल टेनिस, जहां पर भारत ने ईरान को वुमेन्स डबल्स राउंड 2 में हरा दिया। इंडियन टीम वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्रिया चिटाले एंड यशस्वनी घोरपड़े, हु सिक्योर्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 3-0 विन ओवर ईरान विद 11-2, 11-2, 11-4। एंड देन वुमेन्स डबल्स राउंड 2 के अंदर भारत की एक और महिला जोड़ी उतरी, दिस टाइम फेसिंग अगेंस्ट देयर मंगोलियन कंपैट्रियट्स ओपोनेंट्स, जहां पर हमने देखा कि भारत ने एक बार फिर से बड़ी आसानी से मंगोलिया को भी 3-0 से शिकस्त दे दी। श्रीजाकुला एंड सिंड्रेला दास बिगन देयर वुमेन्स डबल्स कैंपेन इन स्टाइल, क्लोजिंग टू अ कंफर्टेबल 11-5, 11-4, 12-10 विक्ट्री ओवर बोलर अर्डीन वोटमुक एंड संजा फ्रॉम मंगोलिया। वहीं मेन सिंगल्स राउंड 1 में

0: advanced to the mixed doubles quarterfinals. The second game proved to be a thriller, with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level it at 9-9 and earn a game point. However, Doshana Chinnappa's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: थोड़ा क्रिकेट की बात फिर से शुरू हो गई है एशियन गेम्स से। आपको बताइए कि महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता, अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की। मेंस वर्ग का मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है और पहला मुकाबला था जापान यानी जो मेजबान टीम है और अफगानिस्तान ने, तो वहां से ये खबर ये आ रही है कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने मेजबान जापान को 48 रनों से हरा दिया है। और आपको तो याद होगा कि भारत को क्वार्टर फाइनल में बाई मिला है मेंस टीम में। 28 सितंबर के इंतजार कीजिए, एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल क्रिकेट की शुरुआत पुरुष वर्ग में भी होगी
0: जी, और कबड्डी के लिए भी आज के दिन की शुरुआत कर ली है, जिसमें इंडिया इज अप अगेंस्ट चाइनीज तिपाई इन द मेंस ग्रुप ए मैच। और फर्स्ट हाफ भारत के नाम रहा बहुत ही कन्विंसिंगली और कमांडिंग तरीके से, जहां भारत ने 23-11 से फर्स्ट हाफ को अपने नाम किया। और दूसरा हाफ दोस्तों अभी जारी है, बरकरार है। भारत इस वक्त उसमें भी लीड में है 5 अंकों से, यानी भारत के पास अभी हुए हैं 12 अंक और चाइनीज ने पाए अपने उसमें सिर्फ 7 अंक ही डाल पाए इन द सेकेंड हाफ। द मैच इज स्टिल ऑन गोइंग। इंडिया स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 35 पॉइंट्स, व्हाइल चाइनीज ने पाए स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 18 पॉइंट्स सो फार। सो ही इज होपिंग दैट इंडिया शुड बी एबल टू ऑल्सो क्रूज इजी इन दिस गेम। और आपको ये भी बता दें कि शूटिंग की दुनिया में एक निराशाजनक खबर आपको ये दे सकते हैं कि बोथ द इंडियन मेंस एंड वुमेंस पिस्टल शूटर्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम द एशियन गेम्स विद नो मेडल इन ईदर इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स सो फार। जैसे आपको शबाब बता भी रहे थे, लेकिन एक ओवरऑल अगर आपको पिक्चर दे तो पिस्टल ने अभी तक 7 मेडल्स प्रोड्यूस किए हैं द लास्ट टू एशियाज, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। और आज के लिए या फिर आगे भी मैं कहूंगी दोस्तों, अभी मिक्स डबल्स के इवेंट्स बाकी है। तो ये थे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए, जो शबाब और मैं साक्षी आपके लिए लेकर आ रहे थे। दोबारा एक बार हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय।
2: एक ब्रीद में बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं।
3: हाँ,
2: ब्रीदिंग का जो उसको मास्टरी चाहिए
3: जी, सुनाइए ना प्लीज।
2: अब इतनी ब्रीदिंग मेरी रहेगी कि मालूम नहीं, ट्राई करता हूँ।
3: यस,
2: रेल गाड़ी को चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक, अरे धड़क तो भड़क लोहे की सड़क, धड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, पुलाए चाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा दान हरा मैदान, बूढ़ा किसान मंदिर मकान चाय की दुकान, अरे पिलपक दंडी केले पे झंडी, पानी का कुंड पंच का चूर्ण, झोपड़ी झाड़ी खेती वाड़ी, बादल दुआ मोटा कुआ, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल के हाट, हर गांव में मेला भीड़ जे मेला, टूटी दीवार तट सवार रेलगाड़ी। ये बहुत लंबा एक,
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब जम्बो जेट सुनाइए।
2: तो जम्बो जेट का थोड़ा सा मराठी होने से वो थोड़ा सा मेरे लिए आसान है। अरे जम्बो जेट स्विंग, जम्बो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्हा भेट, जम्बो जेट सोई। अरे घराला धडक दाराला सडक, पकडली गाडीने निघालो तडक, विमानतळावर ठोकतोय तर आणि भारत सोडून काढतोय पळ, उंच आकाशामधले ढग चमकून पाही सारे जग, भेदून गेले एक विमान पंखावरती होऊन ताण, पंखाला त्या पंखे होते विमानाला शेपूट होते, वायुसागरी तरते बेट, जम्बो जेट झोई।
3: वाह वाह वाह,
2: छह स्टम्स आहे उसके,
3: शानदार है। ये तो बड़ा लोकप्रिय हुआ,
2: बहुत लोकप्रिय हुआ। और का प्रोग्राम हो जाए तो एक बार पुणे में प्रोग्राम था सुरेश वाडकर का
3: जी जी,
2: तो उनका महोत्सव होता था 3 दिन का।
3: हाँ,
2: और 3 दिन अलग आर्टिस्ट, एक दिन रविंद्र साठे था, दूसरे दिन उत्तरा केळकर, तीसरे दिन सुरेश वाडकर
3: जी,
2: और तीनों में मैं था।
3: हाँ, आप अरेंज तो, कर रहे थे या बजा रहे थे?
2: नहीं, बजा रहा, तो मैं तो कीबोर्ड बजाता था
3: जी।
2: तो उत्तरा केळकर के साथ बजाने को गया तो वो जो पब्लिक है उन्होंने पहले कहीं सुना था वो गाना मैंने गाया हुआ, तो फरमाइश आ गई, तो कंपेयर बोला ये गाना है फरमाइश। मैं बोला और लोगों के प्रोग्राम में अच्छा नहीं है,

0: के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं देते। तो मैं बोला नहीं, कुछ भी बोल दो मैं नहीं गाऊंगा। दूसरे दिन रविंद्र साठी के प्रोग्राम में फिर फरमाइश आ गई।
1: अरे रे,
0: उस टाइम भी मैंने मना कर दिया। सुरेश वाड़कर के प्रोग्राम में
1: हंगामा हो गया।
0: हाँ, 2, 5, 10, 15 चिट्ठी तो सुरेश के पास चिट्ठी दिया वो कॉम्पेयर ने।
1: हाँ हाँ।
0: तो कैसा बोलते, अरे अप्या अप्या बोल,
1: बहुत मजाकिया भी है।
0: मजाकी बिल्कुल। अप्या, अरे बाबा काय ते जंबो जे जमले केवड़ा चिट्ठी आल्या का बाबा तू का वो खुद बोला। हाँ। तो मैंने उस टाइम वो गाया था उधर।
1: क्या नजारा होगा वो, वाह,
0: वो खुद खुश हो गया। अरे क्या बात है, बोल तो क्या तेरा दमछा क्या बोले यादगार भी अच्छी है बोला।
1: तो मुझे एक बात बताइए कि आपने वो स्वरलिपि वाली जो किताब लिखी है उसके पीछे क्या रीजन था?
0: वो मराठी ऑर्केस्ट्रा बहुत करता था मैंने ना
1: जी।
0: अच्छा, अप्पा वड़ाकर एक नाम हो गया उधर स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे, क्या कर रहे हैं, कुछ पूछते भी थे। वैसा मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन जिसको कुछ समझो कि कुछ आया आपको कुछ आया क्या क्या फलन है, तो उनको समझ लेना एज अ सीनियर। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कि कुछ नोटेशंस की हम लोग को मालूम नहीं है वो, अभी हर एक को मैं कहा लिख के दूं। तो एक प्रपोजल आएगा क्या पुस्तक ये करने का, और वो मेरे गुरुजी के पास गया, प्रभाकर पंडित जी के पास गया कि ऐसा ऐसा आपा को बोलो ना नोटेशन का बुक ये करते हैं, वो मना कर रहे हैं। तो पंडित जी ने अभी गुरु का ही बोला रे कर दो ना, मतलब मराठी में बोला मास्टर मेरे लिया त्रास हो तो नहीं, मैं हेल्प करूंगा बोले, तू लिख इनिशियल मैं चेक करता हूँ पूरा। तो ऐसे हो गया, 30-35 गाने का कुछ किया था
1: जी।
0: उसमें मैंने एक किया था कि और कुछ गाने हो गए समझो, भक्ति गीत भावगीत XYZ, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए।
1: हाँ, हाँ।
0: उसका नोटेशन भी मैंने उसको ऐड किया था।
1: क्या बात है, सुंदर।
0: वंदे मातरम और जनगण मन
1: जी। मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल।
1: तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए, हिंदी?
0: आरडी बर्मन का।
1: हाँ।
0: तो मुझे ना उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसन का अपन बोलेंगे ना वो
1: एक चतुर्नार।
0: हाँ, एक अलग टाइप का गाना है, और दोनों गायक ने इतना अच्छा बढ़िया गाया है ना
1: जी,
0: तो वो सुनिए।
1: बिल्कुल। सु

தாம் ரோக்

ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं दिए।

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: अपा, मैं अब आपसे पूला देशपांडे की याद चाहता हूँ। उनके साथ आपने काम किया और एक बड़ी अच्छी याद है आपकी।
1: उनका एक एनसीपीए का प्ले था
0: जी,
1: उन्होंने लिखा हुआ, वामन केंद्रे का उसको डायरेक्शन था और उसका म्यूजिक डायरेक्शन था जाने माने हमारे मराठी के अशोक रानडे नाम के
0: जी,
1: बहुत ज्ञानी आदमी। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए दो ही म्यूजिशियन थे, एक कीबोर्ड और इसमें मैं,
0: हाँ,
1: और रिदम में देवदत्त साबड़े, शायद साबड़े का लड़का
0: जी।
1: तो रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ, फ्लूटिस्ट भी एक्चुअली था,
0: हाँ,
1: लेकिन वो थोड़ा लेट आऊंगा ऐसा बोल के, कुछ रिकॉर्डिंग थी सुबह, तो बोले चलो हम लोग इनके पीसेस लेते हैं, ऐसे रिदम का और अप्पा को जो कुछ कुछ है वो लेते हैं। तो हम लोग ने 11 बजे शुरू किया रिकॉर्डिंग, वो एनसीपी

0: स्टूडियो में
1: और एक डेढ़ बज गया, हम लोग के कम से कम 12-13 पीस रिकॉर्ड हो गए। और वो अंदर से आवाज आया, चलो अभी थोड़ा लंच करते। अभी ये पहले मुझे मालूम नहीं था कि अंदर पुल देशपांडे बैठे हुए सुन रहे रिकॉर्डिंग पूरा। और जो अंदर से आ गए तो अरे भोरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी के साथ में सामने मैंने 2.5 घंटा बजाया, कैसा क्या बजाया मालूम नहीं है। तो आए वहाँ अप्पा खूब छान, ऊपर आए, इंस्ट्रूमेंट था मेरा, तो मराठी में बोले तुमसे है यंत्र हाथाड़ू का थोड़ा सा थोड़ा बोला आपको क्या बोले थोड़ा सा उनका हाथ मेरे कीबोर्ड के लग गया।
0: वाह।
1: फिर बाद में क्या लंच के टाइम उसके बाद फिर भी फ्लूटिस्ट आया नहीं
0: जी,
1: तो अशोक जी रानड़े जी रुके थे कि फ्लूटिस्ट आएगा, तो पुल देशपांडे बोले रुके क्यों, बोले आया नहीं फ्लूटिस्ट, आपा बजा सकता है क्या इंस्ट्रूमेंट पे है? हाँ आ सकता है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बजवा लो इससे अच्छा बजा रहे। तो पूरा वो नाटक का पूरा जो कुछ बैकग्राउंड का मेलेडी था वो मैंने बजा।
0: वाह वाह वाह, कितना अच्छा अनुभव ये। तो
1: और दूसरी एक अच्छी बात है कि उनका जो एक मराठी में जैसे हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं ना, वो उनकी जो कथा ही है वो खुद बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियो आए, तो उसके पहले कुछ टाइटल ट्यून चाहिए थी। तो हमारा मित्र है अभी नहीं है वो, आनंद मोड़क नाम का
0: जी जी,
1: उन्होंने वो ट्यून कंपोज की और वो पूरा म्यूजिक मैंने कीबोर्ड पे बजाया, वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुआ, रिहर्सल चालू हुई और पूरा देशपांडे अंदर आ गए और मेरे बाजू के कुर्सी में बैठ गए और मेरे को बहुत टेंशन आ गई, इतना बड़ा एक खुद अच्छा हारमोनियम बजाते थे ना
0: जी जी।
1: और बड़े हारमोनियम
0: जी,
1: तो बोले फिर भी हो गया, मेरा काम अच्छा हो गया, उनकी शाबाश की मिल गई, बड़ा आदमी है।
0: वाह वाह क्या बात है। अच्छा आप यूट्यूब पर कुछ वीडियोस जारी करते हैं अप्पा अंची गप्पा, ये आइडिया कहाँ से आया था और इसमें तो आप तकरीबन शतक बना चुके हैं।
1: हाँ अभी 100th एपिसोड मैंने अभी डाला, एक 4-8 दिन हो गया अभी
0: जी। तो ये तो सेंचुरी हो गई भाई।
1: हो गई वो एक्चुअली क्या कोरोना के टाइम क्या हो गया, मेरे एक मित्र है प्रशांत ठाकरे नाम का
0: जी,
1: अच्छा म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है और टेक्नीशियन अच्छा है, तो वो बोला तेरे पास इतना बोलने के लिए तो इतना काम किया है तू ये कर ले ना। मैं बोला इसमें से मेरे को 0% आते है, कुछ मालूम नहीं। तो बोला मैं हूँ नसीर, तू आ मेरे घर में आ, मेरा सेटअप है, तू बोलते जा, बाकी पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन जो कुछ होगा अपलोड करने का भी सब मैं करूंगा।
0: अरे गजब।
1: अरे मैं पैसा कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। बोला तेरे को आने जाने में जितना लगेगा, खाने में लगेगा उतना ही, और तेरा पैसा मेरा पैसा कुछ नहीं है।
0: अरे गजब।
1: तो वो चालू हो गया, फिर अभी 100 एपिसोड हो गए मेरे।
0: देखते,
1: और वो
0: देखते।
1: एक योगा योग की बात है कि मेरे माँ का जन्म शताब्दी वर्ष चालू है अभी।
0: हाँ।
1: तो उसका एक प्रोग्राम मैंने किया था सावरकर हॉल में
0: जी,
1: बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो वो एपिसोड मैंने 100th एपिसोड है मेरा।
0: हाँ, वो आपने यूट्यूब पे डाला।
1: हाँ, यूट्यूब पे डाला
0: जी। 100 एपिसोड लोगों का क्या रिस्पॉन्स है?
1: रिस्पॉन्स ऐसा अच्छा है, लेकिन व्यू टाइम मेरा बहुत कम है
0: जी जी,
1: यानी मेरा अभी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, अभी उसका इंतजार है।
1: इंतजार अभी एक्चुअली मेरा क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन में उसको कर रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण काम है, आप अलग अलग लोगों को उसमें याद कर रहे हैं,
1: जिसको फायदा हो जाए उसको फायदा हो जाए,
0: कहानियां सुना रहे हैं।
1: हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि बाबा ये गाना अरेंज किया तो उसके वो अरेंजमेंट के लिए मेरी क्या सोच थी।
0: हाँ अच्छा, अभी मैं आपको एक गाना याद दिला रहा हूँ सुरेश वाडकर के एल्बम का, मन है खुड़े कसे।
1: हाँ, वो देव साहब का एल्बम है, यशवंत देव का। पूरा सोलो है, सुरेश का 8 गाने का सोलो है वो
0: जी।
1: उसमें एक तो मुझे 3 गाने में वायलिंस, ग्रुप वायलिंस, क्योंकि मराठी के इसमें कैसेट के लिए ग्रुप वायलिंस मिलते नहीं
0: जी,
1: तो बजट बढ़ जाता है ना, 10-12 वायलिंस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें मिल गए, वो काम करने में बहुत मजा आ गया, कोरस का यूज करने को लिए मजा आ गया। एक तो ट्यून्स बहुत अच्छी है देव साहब की, लिरिक्स अच्छे है जो कवि के है वो, और सुरेश ने बहुत अच्छा गाया, बहुत
0: लोकप्रिय है।
1: वायलिंस के तीन गाने जो है वो मुझे तीनों गाने उस पे, एक गाने पे मैंने वीडियो भी बनाया उस।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, एक एपिसोड वो गाने पे है
0: जी। अब मुझे ये बताइए कि इतने सालों से आप

0: संगीत की दुनिया में हैं और हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती हैं।
1: बसती थी अभी एज के हिसाब से थोड़ी सी फ्लुएंसी कम हो गई
0: जी,
1: फिर भी अभी मैं लाइव प्रोग्राम बहुत बजाता हूँ।
0: हाँ,
1: लेकिन पहले क्या मैं एज ए लीड बजाता था।
0: जी जी,
1: तो अभी थोड़ा सा सपोर्टिव।
0: हाँ,
1: वो हो जाता है थोड़ा सा, अभी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना
0: जी,
1: कभी अटक जाता है थोड़ा सा।
0: संगीत की दुनिया में जो आधुनिक बदलाव हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या सब कुछ बहुत कृत्रिम होता जा रहा है?
1: ये तो होना ही था क्योंकि सब आर्टिफिशियल है। अभी एनालॉग रिकॉर्डिंग और डिजिटल में वो फर्क आएगा। लेकिन जैसे प्लस है उसके माइनस भी है
0: जी।
1: अभी जैसे समझो पहले में जो कैसेट्स किया उस टाइम 10 गाने करने पड़ते थे क्योंकि C60 का कैसेट होता था तब।
0: हाँ।
1: 60 मिनट का कैसेट, तो कम से कम ये साइड 5 गाना, वो साइड 5 गाना। लेकिन वो एक एक कैसेट हम लोग ने 4-4 दिन में मास्टर दिए
0: मास्टरेटिव,
1: क्योंकि दो ट्रैक, पहले तो एक ट्रैक में रिकॉर्डिंग हुआ तो करता था फुल ट्रैक रिकॉर्डिंग, फिर दो ट्रैक हो गए, फिर 4 ट्रैक हो गए। उसी टाइम जो रिकॉर्डिंग के टाइम में बैलेंस होते, 4 ट्रैक जब हो गए तो एक ट्रैक पे रिदम पूरा बैलेंस हो जाता था, एक ट्रैक पे मेलेडी बैलेंस हो जाती थी, तभी एक ट्रैक वॉइस को जाता था। तो मिक्सिंग को बहुत कम टाइम लगता था
0: जी जी।
1: अभी ये डिजिटल के हिसाब से क्या करते हैं, एक लाइन है तो उसका ऑप्शन 10 ऑप्शन हो,
0: बहुत सारा पंच करते हैं।
1: हाँ, फिर बाद में उनको ही पता नहीं चलता कौन सा अच्छा हाथ लगा मेरे को।
0: कोई बात नहीं,
1: तो फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ही कंफ्यूज हो जाता है, बाबू इसमें से अच्छा कौन सा है। लेकिन मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर को बोला था, तुम्हें 10 ऑप्शंस लिए क्यों, एक लिया, दो लिया, तीन लिया
0: जी,
1: लेकिन उसमें से एक तो अच्छा है ना।
0: हाँ।
1: तो दूसरे दो हटा दो ना उसी टाइम।
0: हाँ।
1: तो 10 रखेगा, फिर बाद में तेरे को याद नहीं रहेगा कि कौन सा अच्छा है, तू सब सुनते रहेगा। एक गाने के मिक्सिंग को 1.5-2 घंटा लगने चाहिए, तो 6-8 घंटा लगता है,
0: कई कई दिन लगाते हैं।
1: फिर एक दिन में एक गाना हो जाता है और क्या।
0: अपा, अब बातचीत जो है वो लगभग आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि अपनी पसंद का कोई एक गाना हमारे सुनने वालों को समर्पित करें आप।
1: एक तो श्री रामचंद्र जी का वो मेरे वतन के लोगों, लता दीदी का।
0: वाह,
1: श्री रामचंद्र के साथ मैंने काम किया एक बरस, वो हमारे मुख्य थे जब वसंत से गुजर गए
0: जी
1: 75 को। उसके बाद एक बरस अन्ना ने, जिनको अन्ना बोलते थे सब इंडस्ट्री में, अन्ना ने वो उनके जगह काम किया है। और ये गाना यानी कुछ अलग लगते है गाना सुनने के बाद, वो इमोशंस अलग हो जाती है, तो वो गाना सुने
0: जरूर। कवि प्रदीप की रचना है, इसे लता जी ने गाया था।
1: बिल्कुल।
0: और नेशनल स्टेडियम में जब दिल्ली में ये गाना लाइव हुआ था तो वो एक इतिहास है। अपा, आप विविध भारती की स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन की इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटी, नई पीढ़ी को चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: 2-3 चीजें हैं। एक तो डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, पैसा मिलता है इसलिए काम मत करना।
0: वाह।
1: और काम करते करते पेशेंस चाहिए, टाइम पे आना, जो मैं करते रहा हूँ, अरेंजर हो गए तो उस हिसाब से काम करो, सिंगर हो गए तो मेहनत करनी पड़ेगी अलग तरह से, अपने गुरु को याद करो अच्छी तरह से। और सबको मैं शुभकामना देता हूँ और विविध भारती के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया है आपने। जो कुछ मैंने बात की है, हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है,
0: अरे आपने बहुत अच्छे से बात की है,
1: कोशिश की है और आपने सब करवा लिया मुझसे तो ग्रेट है,
0: बहुत शुक्रिया। थैंक्स।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

0: संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज विदा।
0: मिलिए जाने माने गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शोभा जोशी की आवाज में

शोभा जोशी की आवाज में अभी आपने ये मिर्जा गालिब की रचना सुनी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब का संगीत, गैफ भोपाली की रचना, गायिका है परवीन सुल्ताना और फिल्म का नाम पाकीज़ा। हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी गाई ये ठुमरी।

0: तो आइए आपको लिए चलते हैं अब डेट के लिए।
1: एशियन गेम्स 2026 आयोजन हो गया।
2: ऑफ आकाशवाणी में हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दोस्तों शबाब अनवर और हम लेकर आ गए हैं सुबह के 11:30 बजे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द लास्ट वन आवर। सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग खबर जो आई है पिछले एक घंटे में वो रही बॉक्सिंग की दुनिया से, क्योंकि सुमित कुल्लू का जो 70 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 का बाउट था वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम अमदन अल सरे, वेल दैट उसमें बिकॉज ऑफ इंजरी ही हैड टू विथड्रॉ। यस, ही कुडंट कैरी on and as a result this has been the biggest heartbreaking news that has come into play for boxing ke kaam se because unko forfeit karna pada apna third round. Bata de aapko ki Sumit landed big punches early in the bout and maintained a clear dominance over the Iraqi pugilist. The Indian boxer took the first round 5-0 before Kasim made a bit of a comeback. However, the second round once again went to Sumit with a split decision of 3-2, but disaster struck just seconds into the third round as Sumit suffered a severe knee injury, slipping and hobbling before the medical officer stepped in to stop the bout. Commentators suspected an ACL injury, bringing a heartbreakingly abrupt end to his campaign. And because of this, Iraq's Ali Al-Sareh advanced to the quarterfinals. And Shabab, kehna padega ki ye jo ghatna unke saath hui hai, wo definitely heartbreaking to hai.
3: Yeah, bahut hi nirashajanak hai. क्योंकि काफी उनसे उम्मीदें भी थी और स्वयं भी काफी आत्मविश्वास से लबरेज थे अगर मुकाबले से बॉल से पहले की बात करें तो। लेकिन उधर हमें अगर कबड्डी की बात करें तो यहाँ जलवा भारत का बरकरार

0: है लगातार चौथी जीत दर्ज की है भारत ने। चीनी ताइपे को 37-21 से हराया है और जैसा कि हमने बताया कि लगातार चौथी जीत के साथ लगभग सभी ग्रुप मैच जीत कर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है पुरुष कबड्डी में।
1: Right, and the other big news that we'll now bring to you, or rather should we move on towards, is from the world of squash, जहाँ पर हमने देखा कि अनहद सिंह won and wrapped up a contest with an 11-7 victory in the third game, and thereby in the women's singles round of 16 clash was able to defeat her opponent 3-0 to qualify for the quarterfinals. It was a clean victory that came her way, 11-4, 11-5, 11-7. Good news from the world of squash. और उससे पहले भी अगर हम squash के कुछ और events के ऊपर आज एक नजर डालें तो All Indian clash in the mixed doubles round of 16 भी हमने आज देखा, जिसमें Joshna Chinnappa and Vilavan Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indians Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. And men's singles round 1 maybe, Manoj Shah enjoyed a comfortable start to his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kwee Shen of Malaysia 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. So convincing, comfortable, commanding victories coming from the world of squash, especially for the Indians. And today, this event ke andar aur bhi aap bahut sari events dekhne wale, यानी स्क्वाश के अंदर जहां पर आप देखेंगे अभी हमने देखा अनहद सिंह पीएस सिंह की वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 का क्लैश, उसके बाद अभय सिंह वीर चौटरानी तन्वी खन्ना विल आल्सो बी हैविंग देयर इवेंट्स टुडे।
0: अगर तलवारबाजी की बात करें तो सुबह 10:30 बजे हमने एक अच्छी खबर सुनाई थी, लेकिन अभी जो खबर है वो अच्छी नहीं है क्योंकि भवानी देवी जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हम श्रोता को बता दें कि भारत के सीए भवानी देवी महिला साबरे के राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई है। उन्हें 2026 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन के राव शुंगई ने 15-5 से पराजित कर दिया है।
1: Right, and the big news that came in today early in the morning was from the world of wushu, jahan Roshit Bina Devi ne women's 60 kilogram final ke andar silver medal apne naam kar liya aur Bharat ka naam ek bar fir se roshan kar diya. Hat-trick of medals for her in the Asian Games, because 2018 ke Asian Games mein unko bronze se nawaza gaya tha, 2022 ke Asian Games mein unko silver se nawaza gaya tha, aur ek bar fir se 2026 mein unhone silver padak apne naam kar liya. Goes to show her complete dominance in wushu in the 60 kilogram category, which she obviously earned after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. And Shabab, hume pata hai, it's never going to be easy to defeat a Chinese opponent in any sport. But we have Roshi Bina Devi somehow breaking those barriers and every time proving every person wrong that we can go ahead and defeat China or Japan also.
0: देखिए इंडिविजुअल राउंड में अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी एथलीट ने जो कारनामा दिखाया है उनमें वो सबसे आगे हैं। जिस तरह का उनका सफर रहा है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने कई खेल छोड़े हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए जो उन्होंने जो अपनाया है घटना घटने के बाद उनके बाद उसमें लेकर के जो आगे बढ़ी वो काबिले तारीफ है।
1: राइट, एंड नाउ अ क्विक अपडेट आल्सो कमिंग इन फ्रॉम शूटिंग, जहां आपको बता दें कि एक अच्छी खबर या खुशखबरी की हम उम्मीद कर सकते हैं शूटिंग में, वो है मिक्स टीम स्केट के फाइनल्स के थ्रू, बिकॉज़ इसके अंदर आपको बता दें द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ अनंतजीत सिंह नरुका और परनाज धलेवाल हैव मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द मिक्स स्केट शूटिंग कॉम्पिटिशन एंड दे हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द क्वालिफिकेशन राउंड गेटिंग 138 आउट ऑफ 150 पॉइंट्स एज पर द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स आल्सो। कतर, साउथ कोरिया और चाइना उनके ऊपर है ये तीनों देश, चौथे पर उन्होंने फिनिश किया था, तो दे आर गोइंग टू नाउ बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिक्स्ड स्कीट टीम फाइनल्स। ये इवेंट 11:15 बजे सुबह शुरू हो चुका है, इसके बारे में आपको अपडेट लेके आएंगे अगले एक घंटे के बाद यानी दोपहर 12:30 बजे आपको इसे बताएंगे क्या हुआ। फिलहाल के लिए शबाब और मुझे यानी साक्षी को दीजिए इजाजत, वी विल कैच यू बैक अगेन विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द 12:30 अपडेट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।

0: अंदा बास्केट में दधिया लपेट के धल्लैयो बंसारे अपन नरब दसा पड़ विचार
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
2: दुबई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी लो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सूरदास के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं संत मीराबाई का भक्ति पद। इसे आवाज दी है डॉक्टर मलिका बनर्जी ने।

0: दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं अख्तर नाजमी का ये कलाम।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: हाँ भाई क्या रे चालो हो
1: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा ना के फिटे के को
1: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक और होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर वीडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिन पंप सेट रे 10000 पर्यंत एवं होंडा पावर वीडर रे 30000 पर्यंत
2: ଝୁମର ଗୀତର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ

0: एक्सट्रीम्स की फाइनल्स में हमारे भारतीय शूटर्स अनंतजीत सिंह नरूका और परिणाज धालीवाल ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। जी हाँ, अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस पुट अप बाय द टू इंडियन शूटर्स इन द मिक्स टीम्स की फाइनल्स, अनंतजीत सिंह नरूका एंड परिणाज धालीवाल, एंड दे हैड ऑल द रीजंस टू स्टैंड टॉल एंड प्राउड फॉर देयर एफर्ट्स बिकॉज डिस्पाइट टाइंग विद कोरिया एट 44 पॉइंट्स फॉर द नंबर 2 स्पॉट यानी दूसरे स्थान के लिए, दे हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज आफ्टर द एंड ऑफ द सिक्स सीरीज 6 ओइंग टू अ लोअर स्कोर इन क्वालिफाइंग राउंड। जी हाँ, बिकॉज द स्कोर्स ऑफ द इंडियन शूटर्स were low in the qualifying round, hence they couldn't stand to be in competition for the second spot finish, but nonetheless the effort of Anantjeet Singh Naruka and Parinaz Dhalwal in itself is huge, commendable and appreciable. So here's to the Indian shooters and to the Indian men's team's final events which concluded with the bronze medal for India.
1: तन्वी खन्ना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, हम आपको बता दें, और अभय भी राउंड 16 में पहुंचे हैं। तन्वी खन्ना ने स्क्वैश के विमेंस सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, उन्होंने सिंगापुर की केई गेन को 3-1 से पराजित किया। मेन सिंगल्स इवेंट में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली। वीर चित्रानी ने मलेशिया के संजय जीवा के खिलाफ पहला गेम 11-19 जीता था, 11-9 से माफ कीजिएगा जीता था, जिस समय हम आए थे स्टूडियो। और उधर इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सिंगापुर की ओ यू योंग वाई यन

0: से हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-15, 11-7 से जीता और इस जीत के साथ ही अनाहत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। तो स्क्वैश में आज सुबह से ही अच्छी खबरें आ रही
1: जी, और क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी खबरों की बात कुछ कर रहे हैं और ये सिलसिला भी शुरू हुआ है तो उसको मैं बरकरार रखती हूँ। कबड्डी की दुनिया से भी अपने श्रोताओं का हमें लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि एज वाज एक्सपेक्टेड चाइनीज ताइपे टीम वाज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम। इंडिया सिक्योर 37-21 विक्ट्री टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एज द टॉप रैंक्ड टीम। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत को कबड्डी की दुनिया से अब एक मेडल तो डेफिनेटली तय हो ही गया है। अब वो कौन से रंग का होगा शबाब, थोड़े दिनों में या कह सकते हैं कि थोड़े ही पलों में पता चल जाएगा कुछ घंटों बाद कल तक, लेकिन फिलहाल द गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी इज दैट
0: ये रंग तो वही स्वर्णिम होगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तलवारबाजी में भी काफी उम्मीद थी भारत को, लेकिन खास करके भवानी देवी महिला वर्ग में, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। राउंड ऑफ 16 में वो हारी है और ये जो साबरे में राउंड 15 का ये मुकाबला था, राउंड ऑफ 16 का कहते हैं, उससे वो बाहर हो गई। जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट चीन की रॉय शूटी ने 15-5 से उन्हें पराजित किया।
1: राइट, और आपको बता दें आज दिन की शुरुआत हुई थी रोइंग की दुनिया से, जहां पर हमें सबसे पहले मेडल्स की अनाउंसमेंट्स आज भारत के एंगल से मिले थे। मेंस डबल्स कल्स फाइनल्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था, जहां पे हमारे रोअर्स सत्ताम सिंह और सलमान खान ने फिनिश किया था थर्ड स्पॉट पर इन द मेंस डबल्स कल बाय ऑब्वियसली टाइमिंग स्कोर ऑफ 6:13.25 टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल, फिनिशिंग जस्ट 3.48 बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ चाइना। यानी बहुत ही छोटे मार्जिन से हम सिल्वर या स्वर्ण तक नहीं पहुंच पाए शबाब, लेकिन वी स्टिल मैनेज टू गेट अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ द डे टुडे। सो हियर्स टू आवर टू रोअर्स सतनाम सिंह एंड सलमान खान फॉर ब्रिंगिंग द इंडियन रोअर्स एंड मेकिंग देम फील प्राउड।
0: बहुत सवेरे उन्होंने कुछ खबरें सुना दी थी हम लोग को। उधर क्रिकेट प्रेमियों को भी इंतजार था कि मेंस क्रिकेट शुरू एशियन गेम्स में हो रहा है, तो जी हाँ उसकी शुरुआत हो गई, उसका पहला मुकाबला भी हो गया और पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने जीता, मेजबान जापान को 48 रनों से उन्होंने पराजित किया। ग्रुप ए के इस मुकाबले में अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए थे, जवाब में जापान 81 रन बना सका।
1: जी, और हॉकी में आपको बता दें कि मेंस हॉकी पूल ए एनकाउंटर इस समय शुरू हो चुका है, भारत इज अप अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर भी भारत का कंप्लीट डोमिनेशन दिख रहा है उनकी ओपोनेंट साउथ कोरिया के ऊपर, बिकॉज थर्ड क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है और भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग लीड बना ली है। 6-0 से इस समय भारत आगे है। साउथ कोरिया हैज एन अपहिल टास्क टू मेक अ कमबैक इनटू दिस गेम। भारत की तरफ से शीलानंद लाकरा, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक, दिलप्रीत सिंह और इन चारों कहना चाहिए हॉकी प्लेयर्स ने भारत के लिए गोल दागे हैं, जिसमें से एक तो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन था जो हरमनप्रीत सिंह ने करा। सो ऑल इन ऑल अ वेरी कमांडिंग एंड अ वेरी डोमिनेटिंग स्टार्ट बाय द इंडियन हॉकी प्लेयर्स अर्ली ऑन अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ही इज होपिंग कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हम खुशखबरियों का सिलसिला जारी रखेंगे आप सबके साथ। फिलहाल के लिए शबाब और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। वी विल जॉइन बैक वंस अगेन एट 1:30 PM with all the live updates from the World of Asian Games 2026. Thank you.

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब विशाल मिश्रा का संगीत, अक्षय त्रिपाठी के बोल

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घूंघट का गीत, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और धुन बनाई है हंसराज बहल।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में ये थे कुछ ऐसे नगमे जिनमें दिल की वही बेचैनी सुनाई थी जब किसी के बिना कहीं हमारा मन नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगता और बस उसकी याद साथ चलती है। तो चलिए इन्हीं गीतों के साथ आज की ये महफिल यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एहसास, किसी और कहानी और ऐसे ही कुछ खास नगमों के साथ। और इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने अपने शहर में खुश है ना? या कहीं और गए हैं घूमने किसी और जगह? बताइएगा जरूर। हाँ, ये बात मैं क्यों पूछ रही हूँ आप समझ गए होंगे। जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो हमारी बात समझ में आ गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज पर नहीं है वो सोच रहे होंगे कि भाई हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप अपने शहर में खुश हैं या नहीं। वैसे तो हम अपने शहर में खुश रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं भी रहते। ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आज हम जो ये सुरीला सफर है उसमें एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहाँ बहुत सारे शहर, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कि हर शहर की, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक धड़कन होती है, अपनी बोली, अपना रंग, अपना खानपान, अपना मौसम।

अपनी एक कहानी होती है। और जब यही शहर या स्थान फिल्मी गीतों में उतरते हैं तो ये संगीत हमें उन गलियों में, उन चौबारों में, उन जगहों तक ले जाता है जिन्हें शायद हमने कभी देखा भी नहीं होता, है ना। तो आइए सुरों के साथ आज निकल पड़ते हैं शहर दर शहर, गीत दर गीत। तो अब आप समझ गए हैं कि आज

अब आप समझ गए हैं कि आज हम क्या लेकर आए हैं। चलिए आज की इबारत पढ़ देते हैं तो हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज पर नहीं है वो समझ जाएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, सुरीला सफर में आज सफर सिर्फ गीतों का नहीं है, शहरों और जगहों का भी है। तो आज जरा इन जगहों की भी सुनते हैं, कौन किसे अपने यहाँ बुला रहा है। आज पता है ये शहर ये जगह आपस में बात कर रहे हैं। क्या सुनिए आप भी। अरे सुनिए, इतनी दूर क्यों खड़े हैं, आइए ना मेरे बीकानेर। कभी मेरी गलियों की रौनक देखिए, कभी मेरी हवाओं की गर्माहट को महसूस कीजिए। बीकानेर भाई, अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन रंग और शान देखनी हो तो मेरे जयपुर आइए। मेरी गलियों में घूमकर मेरे रंग देखिए और वो जयपुर की। आखिर गीतों में मेरा नाम यूं ही तो नहीं लिया जाता। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मन हुआ कि मैं भी कुछ कहूँ। आइए कभी मेरी वादियों में, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, झीलें, ठंडी हवाएं। मैं तो गीतों में भी कहती हूँ, कश्मीर की कली हूँ मैं। मुझे देखने के लिए बस दिल में थोड़ा सा मौसम होना चाहिए। अरे भैया, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कभी बनारस भी आइए, मेरी गलियों में घूमकर देखिए, गंगा किनारे बैठिए और जाते जाते एक पान तो खाते जाइए। अगर मेरे यहाँ आए और बनारस वाला पान नहीं खाया तो सफर अधूरा ही समझिए। और मेरा क्या, मेरे बाजार में किसी का झुमका भी गिरा था, याद है या भूल गए। भाई तुम्हारे झुमके की बात चली तो मुझे भी याद आया कि ताजमहल की मोहब्बत को देखे बिना आगरा से लौटना मत। हुजूर, आप सबने बुला लिया तो मुझे कैसे भूल गए। कभी लखनऊ आइए, तहजीब से मिलिए, अदब से मिलिए। यहाँ शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दिल्ली कहे मेरे घाघरे की बात ही कुछ निराली है, हर अदा मेरी मतवाली है। और जनाब, इतना सफर जब कर ही लिया है तय तो मेरे पास भी आइए। समंदर है, सपने हैं, रफ्तार है, और मैं तो बरसों से कहता आया हूँ ये है बॉम्बे मेरी जान। और तभी सब एक साथ बोल पड़ते हैं तो फिर तय रहा, अगली बार जब कोई गीत बजे और उसमें किसी शहर या जगह का नाम सुनाई दे तो सिर्फ गीत मत सुनिएगा, उस शहर की उस जगह की आवाज भी सुनिएगा, क्योंकि इन गीतों ने हमारी गलियों, बाजारों, रंगों, खुशबू और यादों को भी सभी की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। तो समझ आई हमारी आज की इबारत। तो चलिए घूमने निकलते हैं इन्हीं शहरों की गलियों में।

जी तो हमने शुरुआत की है बीकानेर से। कभी गए आप इस शहर में? बताइएगा अगर आप बीकानेर गए हैं तो आपको कैसी लगी वहाँ की आबो हवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन। और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ। 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेही व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का साथ बराबर बना रहा। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आकाशवाणी बीकानेर को अपने ट्रांजिस्टर सेट पर सुनते सुनते कब मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहाँ बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था। आज भी जब उधर से गुजरता हूँ तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ। गाड़ी बंगला सब कुछ है मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है। और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहां राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है। बनारस की गलियां जीवन का दर्शन कराती हैं तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है। आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है। मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुनकर सबसे ज्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज्यादातर कहानी के मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखने की बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परंपरा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल। कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहाँ के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग। हमारे दो सवाल तो आने ही

अले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है गहरी चाल।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया, बालम, आवोनी, पदारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गायकी याद दिलवा दी। जो मांड गायिका पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर, और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है। मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूँ।

0: वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बीकानेर नहीं गया हूं अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूं और तनोट बॉर्डर भी घुमा हूं, ऊंट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं दुनिया एक श्रोता लिखते हैं कि वाह फिर से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहां कहां घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफर के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में आता है, बताइएगा। अगर आता है तो कौन सा गीत है वो।
1: শ্রোতা বন্ধু এতবেল যাই কার্যক্রম রিলেকারী প্রচার কলু বিবিধ ভারতী বিজ্ঞাপন প্রসারণ সেবা দিল্লি আকাশবাণী বারিপদা স্টুডিও ঘড়ি সময় বর্তমান দিন গোটাই বাজে 20 মিনিট প্রচার করুছু মহিলা মহল কার্যক্রম মহিলা মহল উপস্থাপনায় অনেক প্রভাতী দাস।

0: Singh and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही

0: maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Parmo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India stormed into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से कल भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

0: मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
2: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छे तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कर

0: ही अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6 मिनट 13

0: पांच सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें एक स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत।

0: ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा को सबुठ बड़ प्रेरणादायक शक्ति।

0: एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।

0: दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके

0: कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद भुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको।

0: तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: और आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: ಹೇಳಿ.
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को, सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार. और आज हमारे साथ है आरती. तो आरती, तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार. और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं.
2: बिल्कुल. और मंजरी जी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार. और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
1: क्या बात है, और बताओ कैसे.
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं. और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के.
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं. तो मतलब ऐसी बात भी है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो.
2: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना, जो दिल के एकदम करीब हो जाता है, वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना.
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे.
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें. तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं. तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए उन पर बात कर लेते हैं कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स. यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है,
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं.
1: हाँ, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है. तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती. तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं, अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं. तो
2: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से, सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं. ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं. और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में. सोचो, एक अंतरिक्ष है, एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं. और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो. पता नहीं कब से, शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है इसकी, तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है. अभी भी हम चौंक जाते हैं.

0: अद्भुत हैं, मतलब अद्भुत दुनिया ही है।
1: बिल्कुल।
0: और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है, कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती हैं और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
1: कहते हैं ना जो इंसान ने वो जो सारे तत्व है पृथ्वी के उससे मिलकर बनाए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो, है ना।
0: तो इस पर बात

0: सकती हूँ, है ना?
1: तो इस पर बातें करेंगे। और मुझे कुछ कहना है कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि 2 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, कि आज सुबह सुबह रूठे,
0: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई।
1: तो इस तरह के कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हैं हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
0: और जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो अब गीत सुन लेते हैं।

0: पर आकर रुक जाती है। गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने मिलकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना उसे जानना शुरू किया तब से, या शायद उससे पहले भी, हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आरती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल, और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसे तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव है जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती है, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, और बहुत ज्यादा जो गहराई होती है वहां पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंस यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जरा सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए, जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल, और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल पीले नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं। और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहाँ पर। और समुद्र की गहराइयों में बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज गया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से कई जगह, गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहाँ स्टीमर रुकता था वहाँ की जगह पर उतरकर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताजा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं। इन्होंने लिखा, बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित भी हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल,
0: पहली बात तो।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं तो वहाँ की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल
1: ठंडी हवा
0: होती है, ठंडी हवा होती, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देख कर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिख कर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अथाह नीला विशाल रूप, क्षितिज जहाँ आकर झुकता है, खिलती जहाँ सुनहरी धूप, रेत

0: सबसे बड़ी चीज है जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना,
1: हाँ,
0: वो जीवन चक्र प्रभावित होगा बुरी तरीके से।
1: सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंके, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
0: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमयी समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है, और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
1: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तो आरती देखो हमारे साथी क्या लिखते हैं बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार है, जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है बल्कि रहस्यमय जीवन तो अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं, और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है, लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियाँ, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियाँ इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, वहाँ का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहाँ ऐसे बायोलुमिनेंस जो जीव होते हैं वो रहते हैं जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं, मतलब जहाँ पर पानी के सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती वहाँ पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती है और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती है। धरती के लिए महत्व इसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहाँ पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दस पड़ विचार
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दवाई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं।

0: 2026 Ayçi Nagoya.
1: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल और इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है शाबाब अनवर और हम लेकर आ गए आपके लिए ongoing Asian Games 2026 के लाइव अपडेट्स. घड़ी में बज रहे इस वक्त दोपहर के 3:30 बजे और इस अपडेट की शुरुआत मैं एक निराशाजनक खबर के साथ करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि विमेन्स वर्ल्ड फाइनल के अंदर भारत की लोन रिप्रेजेंटेशन जो की थी प्रणति नायक उनसे हमारी सारी उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी है. जी हाँ, प्रणति नायक्स मेडल्स होप इन द वुमेन्स वर्ल्ड फाइनल आर ओवर. इंडियाज लोन जिमनास्ट स्कोर 13.100 आफ्टर हर टू अटेम्प्ट्स, बट स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम यू सियो जोंग, अनचंग ओक एंड डू सियो पुश्ड हर डाउन द स्टैंडिंग्स टू द सिक्स्थ पोजीशन. उज़्बेकिस्तान्स 51 ईयर ओल्ड लेजेंड ओक्सना चुसोवितिना देन स्कोर 13.199 टू मूव अहेड ऑफ प्रणति एज वेल. तो इस खबर के साथ मैं यहाँ से अब अगली अपडेट की ओर इशारा कर रुख करूंगी और उसके पास हम चलेंगे शबाब के पास.
2: जी आज बॉक्सिंग की मुक्केबाजी का जो मुकाबला है जिसमें भारत की भागीदारी थी वो समाप्त हो चुका है आज के दिन. और कहा जाए कि आज का दिन जो भारतीय मुक्केबाजी में दिल तोड़ने वाला रहा है एक तरह से कहा जाए तो. सुमित, जैसा कि हम आपको अपडेट दे चुके हैं पहले, एक ऐसे समय पर घायल होकर बाहर हो गए जब वो जीत के करीब आते हुए नजर आ रहे थे. उसके बाद महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो भारत की साक्षी चौधरी से काफी उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने शुरुआती राउंड में ओलंपिक पदक विजेता को हराया था. कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता है, काफी ज्यादा उम्मीद थी, अच्छी शुरुआत भी उन्होंने की थी, लेकिन वो अपने मुकाबले को बचा नहीं पाई और 2-3 से मुकाबला हार गई. और जाते जाते एक थोड़ी सी उम्मीद और आशा जरूर दे गई है, वो अपने खेल से नहीं बल्कि किस्मत से, परवीन हुड्डा को वाकओवर मिल गया था चूंकि राउंड शुरू होने से पहले ही. अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान की मलिका नोजिशोवा को थोड़ी सी परेशानी हो गई थी जिसके कारण उन्होंने वाकओवर दे दिया, जिसके कारण वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. तो एक उम्मीद बनी है कि क्वार्टर फाइनल में अब उन्हें हम खेलते हुए यानी कि परवीन हुडा को देख सकते हैं. तो साक्षी चौधरी की बात अगर की जाए तो मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई. उन्हें कजाकिस्तान के मुक्केबाज आलुआ बालिकम बोवा ने 3-2 से पराजित किया. तो ये मुक्केबाजी में आज तक का सफर था भारत का.
1: जी, और बॉक्सिंग के अंदर एक स्लाइट करेक्शन करके आपके पास वापस आती हूँ कि वेमेन 65 kg प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर जरूर मिला, लेकिन वो तजाकिस्तान की मलिका नोजिमोवा थी जिसकी वजह से हमारी भारत की बॉक्सर परवीन ने अपनी एंट्री अब क्वार्टर फाइनल्स के अंदर सिक्योर कर ली है. गुड न्यूज कमिंग ओवर देयर थैंकफुली इन सम फॉर्म फॉर द इंडियंस. लेकिन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. अगली खबर मैं आपके लिए दोस्तों लेके आ रही हूँ स्क्वॉश की दुनिया में, जहाँ जोशना चिनप्पा एंड वी संतिल कुमार सिक्योर हार्ट 2-0 victory over their own fellow Indians Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. Dusri taraf agar baat kare to Anahat Singh also won her women's singles round of 16 3-0 to qualify for the quarterfinals, defeating her opponent 11-4, 11-5, 11-7. India also made a bright start in squash in men's singles round of 16 with Abhay Singh defeating Sri Lanka's Ravindu Luxury to seal the match 3-0 in his favor. On the adjacent court, we also saw Veer Chotrani facing a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiva. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chotrani, the score line being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. And finally, Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Oh Yong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning

0: the next three, 11-4, 11-5, and 13-11 to seal a 3-1 victory. So happy days, smiling days for now for the Indians in the world of squash, Shabab.
1: जी बिल्कुल. और लेकिन सब अभी तक आज का जो सबसे ज्यादा जो खुशखबरी दी है वो निश्चित रूप से हम फिर दोहराना चाहेंगे, जो हर अपडेट में हम उनका नाम ले रहे हैं, और वो है रुशबीना देवी. यानी वुशु में आज का दिन बहुत अच्छा रहा भारत के लिए. उम्मीद तो हालांकि गोल्ड मेडल की जा रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया. महिलाओं के 60 किलोग्राम जो सांडा इवेंट होता है उसके फाइनल में चीन की झांग शिया आयुष 0-2 से हालांकि वो हार गई. लेकिन एक खास बात यह है कि रुशबीना ने एशियाड में लगातार तीसरा मेडल ये जीता है, ये महत्वपूर्ण है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला वुशु खिलाड़ी बनी.
0: जी, एंड नाउ ब्रिंगिंग यू सम न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, इन व्हिच इन वुमेन्स सेबर इंडिविजुअल श्रेया गुप्ता रिसीव्ड अ बाय इन द राउंड ऑफ 32 एंड लेटर लॉस 6-15 वर्सेस युआन हायुंग ऑफ कोरिया इन द टेबल ऑफ 16 टू फिनिश 11th ओवरऑल. वहीं अगर कबड्डी की बात कर ले तो एज वाज एक्सपेक्टेड द चाइनीज ताइपे टीम वाज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम, एंड थेरबाय इंडिया सिक्योर्ड अ 37-21 इजी विन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एज द टॉप रैंक टीम. और इसके साथ ही कबड्डी में भारत ने अपने लिए एक मेडल तो तय कर ही दिया है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए और देश के लिए भी. दोस्तों, वी आर नाउ गारंटीड अ मेडल इन मेंस कबड्डी. शबाब
1: जी, हाँ बिल्कुल
0: जी, ओके. एंड इसके साथ ही आई गिव अ क्विक रैप अप बिफोर वी से गुड बाय ऑन द मेडल टैली. आल्सो मेडल टेबल पर भारत की पोजीशन अभी 14th है. कुल मिलाकर भारत के पास दोस्तों इसमें 15 मेडल्स है जिसमें से एक गोल्ड है, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज. उम्मीद करते हैं कि मेडल टेबल में भारत की स्टैंडिंग इम्प्रूव करेगी. फॉर नाउ इट्स शबाब एंड मी साक्षी सेइंग गुड बाय टू ऑल आवर लिसनर्स. वी विल जॉइन बैक अगेन एट 4:30 इन द इवनिंग विद ऑल द अपडेट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स 2026.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
3: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, अनुभव लिखे हुए हैं।
4: तुम्हारे साथी देखो एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों

0: रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती है। मतलब ये चाय पीने के लिए गाने का
0: मना लेते हैं।
1: बिल्कुल मना लेते हैं,
0: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिख के भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरीखी पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंद्र की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
0: सब बजते हैं। हाँ। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी चुटुलिया करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी चुटुली कीजिए, लेकिन हमारी वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब किससे और कितना रूठना चाहिए। हमें गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवन साथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लेकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हो और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में। देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
1: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए,
0: है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठे, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हो सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो ऐसे हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ ये कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है और भी

0: आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
1: बिल्कुल, और साथ ही एक हमारे और साथी जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी जो लिखी भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखे, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखे और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए, ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती है जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती है और बहन को डांटने लगती है। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए। जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर पास हाँ सारे श्रोता रहते ही हैं,
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: दो तीन बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे?
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल
1: आप है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं गुलजार साहब
1: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूँगा, मैं जैके पार फिल्म का आप आने के बोल रहे थे, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर की क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, परखे 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती हैं वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713, और जो सरबती गेहूं रहते हैं ना सर, उसमें मैं पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूं और हमारे क्षेत्र का गेहूं सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूं होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूं होता है, और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं
1: सर। जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा मतलब कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं, तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और गाने के बोल हैं मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस्म है सर जी।
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी।
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ,
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी यादों के आपका है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल दुआएं, बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी।
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी।
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है और घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गाँव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: और वादिया कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दौद पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ नजदीक है इस गाँव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है?
1: ना, अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादिया कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये ककवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: ये ककवासा आपने जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली जी रोड गए ना, यहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गाँव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गाँव की क्या हालत है?
1: गाँव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है हमने सुनो।
1: हाँ, लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ हैं?
1: गांव के हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियाँ चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी, पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं, हम तो पूरे कार्यक्रम जो बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो आता है तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी?
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया
1: जी। सर जी, द्विज भारतीय अवरा तो चलता ही रहता है जी, मान ली सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज?
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्त है सर।
0: अच्छा,
1: नाम ले
0: ऐसा? सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट होगा उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा रहा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजय पथ, उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह, ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे, ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है
1: जी? संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं। मनचाहे प्रोग्राम से इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियाँ देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मनचाहे गीत, और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज़ की खदानें हैं
1: सर? यहाँ पे कोयला खदानें हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूँ मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

स्वच्छता आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002662। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाए गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है छाया की। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं कोई नायिका नहीं, न ही कोई कविता हूँ, बस एक साधारण सी इंसान हूँ। आप यूँ कह सकते हैं कि प्रेम में पड़ी एक मामूली सी लड़की। हाँ, मेरे लिए प्रेम वो नहीं जो सबको दिखे, प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है, प्रेम परीक्षा नहीं, प्रेम प्रतीक्षा है। हाँ, मेरे लिए प्रेम बिना शर्तों वाली शुभ दीक्षा है।

चलो चलते हैं दुनिया से दूर, बहुत दूर दूर, तुम्हारी किताबों से, कहानियों से, कविताओं से। हुँ?

चलो ना, चलते हैं किसी टापू पर जहाँ जुगलबंदी होती है लहरों और झिंगुरों की। सफेद जमी को चूमता है स्याह आसमां। चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी तो, है ना? चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी।

हर चेहरा एक कहानी है, हर कहानी एक संघर्ष। कोई भीतर की जंग लड़ रहा है तो कोई बाहर की। एक तूफान खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अगर आप प्यार में हो तो भावनाओं का तूफान ज्वार लिए होता है। अगर आप प्यार में हो तो रातों की नींद हराम हो जाती है। प्यार में पड़ा इंसान खाना पीना सोना उठना सब भूल जाता है। यानी प्रेम के किस्से दर्द की जागीर होते हैं।

इस अंतराल के बाद छाया गीत में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरी जुल्फें जब तुम्हारे कुर्ते के बटन में उलझती हैं और तुम उसे सुलझाने लगते हो तो प्यार आता है तुम पर। हाँ, तब जी चाहता है कि कह दूं कि जुल्फें यूं उलझाने की साजिश मैंने ही तो रची थी। छू जाते हो तुम मुझे हर रोज एक नया ख्वाब बनके। तुम्हारी बाहों में आके लगता है जैसे लिपटी हूँ पश्मीने में। हाँ, ऐसा ही तो लगता है।

जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारी स्थिर शांत भंगिमाएं देखकर लगता है आहा, क्या अद्भुत, क्या ओजपूर्ण, शांत चित, प्रकाशवान तुम्हारा प्यार है। जब तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्यार है, अथाह प्यार,

तो प्रतीत होता है कि दीपोत्सव की कोई सांझ हो जैसे जो तुम्हारी आंखों में ठहर गई है। हाँ, तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं तब।

कभी कभी हम वो किताब बन जाते हैं जिसके पहले पन्ने पर प्रेम लिखा होता है, हाँ प्रेम, और आखिरी पन्ने पर प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा। बीच के पन्ने जुड़ते बिखरते रहते हैं, यहाँ वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। कहीं लिखी होती है खामोशी, कहीं डरावने एहसास, कहीं घायल मन और कहीं

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी,
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
3: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
3: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
3: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
3: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
3: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
3: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
3: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
3: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
3: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी।
3: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
3: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
3: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
3: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
2: जी।
3: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
2: जी।
3: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
2: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
3: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
2: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन

0: उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी। एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी,
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: हाँ, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर? जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरो जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।

0: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
1: हाँ,
2: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
3: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
1: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
2: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
3: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जैसे?
3: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
1: बताओ बताओ।
3: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
1: ठीक
3: है। बताओ।
2: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
3: और
0: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
3: हाँ, बहुत अच्छे।
1: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
2: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
3: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
1: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
4: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
1: अरे वाह।
3: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
4: जल।
1: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
3: आपने तो मेरी मन की बात कह दी।
1: तो,
3: चलिए
1: शुरू हो जाओ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
1: हाँ हाँ। बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
4: जीवन सुखद बनाएंगे।
3: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।

0: क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
1: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
0: क्या मतलब? हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
0: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है। शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
0: या खुदा,
1: नौश फरमाइए मियां,
0: लाइए
1: खाइए।
2: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
3: लिख दिया।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
4: इरशाद ग्रामी
1: है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
3: वाह क्या बात है। है मश्क सुखन जारी,
1: चक्की की मशक्कत भी।
3: वाह
1: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
3: एक तुरफ तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
3: आजना, क्या खूब गजल कहते हैं आप।
5: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
3: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
1: जी नहीं नहीं नहीं,
5: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
1: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
5: नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
3: क्या?
5: जी एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
1: अरे मान साहब, शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
3: आप भी मान साहब। लेकिन मान साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
1: नहीं नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
5: मोहानी साहब खामखा खर्च कैसा?
1: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
3: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
0: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
3: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
1: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
3: आपने कुछ खाया ही नहीं?
1: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया।

0: वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर। बला की ठंड है लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
2: अरे हसरत,

0: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशआर लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगामे हयाते जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: जनधन योजना द्वारा लक्ष लक्ष लोक बैंकिंग सेवा सह जोड़ी हो पारुछंती। उज्ज्वला योजना द्वारा गरीब परिवार रे महिला मानंकु धुआं मुक्त रोसी रु सुविधा प्रदान करा जाउछि। एहा व्यतीत जल जीवन मिशन भली अनेक योजना लोकंक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आनिछि। हां श्रोता बंधु, एही समस्त योजना आमकु सिखाए जे जणे सचेतन नागरिक भाबरे आमे सरकारंक योजनार लाभ नेबा सह देशर विकास रे निजर अवदान मध्य रखिबा उचित। एही भली अनेक अभियान एवं योजना मान मध्यरे पोषण अभियान टी होछि अन्यतम। एहा सरकारंकर एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। एहा मा ओ शिशुंक सुपोषण, स्वास्थ्य एवं सुंदर भविष्यत गठन पई कार्य करिथाय। सुस्थ शिशु ओ सुस्थ मा होछन्ति एक सशक्त राष्ट्रर मूल आधार। तेणु आसंतु आमे समस्ते पोषण संपर्करे सचेतन हेबा एवं सुस्थ भारत गठनरे निजर भूमिका पालन करिबा। तेबे श्रोता बंधु, आउ जमारु डेरी न करी आसंतु आजिर आमर ए विकास मंत्र कार्यक्रमरे एही पोषण अभियान विषयरे आहुरी अनेक किछि विशेष कथा आलोचना करिबा आजिर आमर अतिथिंक सहित।
1: मैडम नमस्कार।
2: नमस्कार
1: मैडम, आपन को हम विकास मंत्र कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत अछि। ते मैडम, कार्यक्रम आड़ को जीवा पूर्व आपन को परिचय रे हम श्रोता बंधु मान को जणै देबे।
2: मोर परिचय हला, मो श्रीमती विजयलक्ष्मी पटनायक राउरकेला। मो जणे साहित्यिका, तत्सहित जणे प्राबंधिका एवं कवयित्री।
1: ते मैडम, जो कहुचे हमें पीएम पोषण अभियान,
2: जो पीएम पोषण अभियान जोटा को आमे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना बोली कहुछु आमे, सेटा हेउछि सरकारी ओ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय रो शिशु मानंकु पौष्टिक खाद्य जोगाय पे चालुथुबा एक केन्द्र। यार उद्देश्य हेउछि शिशु मानंकर पोषण स्तर बढ़ाइबा, विद्यालय रे सेमानंकर उपस्थिति वृद्धि करिबा एवं शिक्षा प्रति आकर्षण बढ़ाइबा।
1: ते मैडम, ए योजना टी केबे आरंभ करा जैतिला?
2: हमर ए जो योजना टी सेप्टेम्बर 2021 रे आरंभ होइतिला, किंतु एहा पूर्वरु हमर चालुथुला गोटे जोटा की मध्यान भोजन योजना बोली जो कार्यक्रम टी चालुथुला, तार एटा होछि एक नूतन रूपरेख। तेबे ए जो योजना रो मूल योजना टी हमर 15 अगस्त 1995 रे नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो प्राइमरी एजुकेशन जोटा को आमे कहू NPNSP सेई भावरे आरंभ हुई थिला, जहाँ परे मध्यान भोजन योजना एवं वर्तमान पीएम पोषण योजना नामरे परिचित।
1: मैडम, सरकार योजना टी आरंभ करिबा पछरे तार मूल उद्देश्य कौन रही छे?
2: एही योजना टी जो आरंभ कले तार मुख्य उद्देश्य हेउछि जे प्रत्येक शिशु को पौष्टिक खाद्य जोगेई सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामग्रिक विकास गुड़िकर सुनिश्चित करिबा। शिशु मानंकर पोषण स्तर रे उन्नति आनिबा, विद्यालय रे नाम लेखा उपस्थिति वृद्धि करिबा। आमे देखुचे जे ग्रामांचल मानंकर बा बस्ती मानंकर पिला माने पाठपढ़ा अल्पर छाड़ी दे कि रही जाउचंदी, विशेषकर झियो मानक क्षेत्र रे ड्रॉप आउट बोली आमे कहिताउ। तेणु शिशु मानक मध्य रे एई भावनाटी को जाग्रत करिबा पई स्कूल रे जेते उपस्थिति हेबे सेति पई एवं शिशु मानक मध्य रे कुपोषण दूर करिबा, सामाजिक सम्मानता ओ सद्भाव वृद्धि करिबा, जहा द्वारा समस्त शिशु एकाठी बसी भोजन करिबे एवं एही योजना द्वारा शिक्षा प्रति आग्रह बढ़ई शिक्षार गुणात्मक उन्नति करिबा हला एहार मुख्य उद्देश्य।
1: ए जो पीएम पोषण योजना रे पिला मानंकु केउ प्रकार खाद्य सब दिया जाय छै?
2: एही पोषण योजना रे छात्र छात्री मानंकु पौष्टिक ओ संतुलित मध्यान भोजन दिया जाए। किछि किछि राज्य रे किछि किछि खाद्य रो मेनू रही छि परिवर्तन, से हिसाब रे मध्य दिया जाए, किंतु भात, रोटी, डाली, पनीपरिया तरकारी, खेचुड़ी, सोयाबीन तरकारी, सप्ताह रे थरे दुई थर अंडा, एहा छड़ा फल भितरे कदळी आउ सेव पिला मानंकु दिया जाय थाए, एहा छड़ा खीर किंबा खीर जातीय खाद्य मध्य दिया जाय थाए। आमर ओडिसा रे विशेष करी साधारणत भात, डाली, तरकारी ओ निर्दिष्ट दिन रे अंडा दिया जाए, जहाद्वारा शिशु मानंकर प्रोटीन ओ पोषण आवश्यकता पूरण रे

0: स्कोर कार्ड डाउनलोड करें एनबीईएमएस देखा सूचना अनुजाई आसंतास पहलू वेबसाइट रे उत्तरावली प्रकाश पाइब आपण मैंने संवाद शुणुंट आकाशवाणी राज्य में स्थायी सहरी यातायात परिवर्तन योजना प्रस्तुति उपरे एक कर्मशाला आज भुवनेश्वर स्थित खारवाड़ भवन ठारे अनुष्ठित हो राज्य गृह नगर उन्नयन विभाग एवं एशिय विकास बैंक सहयोग में अनुष्ठित कर्मशाला भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप आर्थिक अंचल एक व्यापक स्थायी सहरी यातायात ढांचा प्रस्तुत करने उपर आलोचना विभागीय अतिरिक्त सचिव उषा पाढ़ी कर्मशाला जोगदे यही योजना दस्तावेज प्रस्तुति में सीमित न रही कार्य परिणत होगा आवश्यक कटक स्थित ओडिशा राज्य सामुद्रिक संग्रहालय परिसर में आज विश्व सामुद्रिक दिवस पालित हो कार्यक्रम जल संपद विभाग और सामुद्रिक संग्रहालय संपृक्त अधिकारी ओडिशार सामुद्रिक परंपरा और ऐतिह्य संपर्क आलोचना करते यह अवसर में ओडिशार प्राचीन नौवाणिज्य समुद्र यात्रा संपर्कित एक पोस्टर प्रदर्शनी आयोजन होता बौद्ध जिला न्यायिक विभाग अधीन केतक नूतन प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन ओडिशा हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन आवासी जरिया भित्तिप्रस्तर स्थापन करते आकाशवाणी कटक केन्द्र में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पालन करम केन्द्र कर्मचारी स्वच्छता शपथ पाठ करते यासह कार्यालय परिसर में सफेई अभियान आयोजित होता विद्यालय छात्र छात्री मध्य स्वच्छता संपर्क में सचेतनता सृष्टि केन्द्र पक्षर् सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वक्तृता प्रबंध प्रश्नोत्तर चित्रांकन आदि प्रतियोगितार आयोजन कार्यक्रम आसंतास दुई तारिख पर्यंत चलो बौद्ध जिलार पुरपल्ली में माँ करमशानी वार्षिक पूजा और करमा पर्व अनुष्ठित हो श्रद्धालु माने एक शोभायात्रा रे मां करमसानी प्रतीक भाव एक गछ डाल वर्ण कर पूजा मंडप को नहीं लोक माने निज घर सम्मुखरे मां करमसानी पूजा करते श्रद्धालु माने एही अवसर रे करमा नृत्य परिवेषण करथिबा जणा पड़ी जापान ने चलीथिबा एशियो क्रीडा रे आज गुलीचालना प्रतियोगिता रो दलगत मुकाबला रे अनंतजीत सिंह नारुका और परिणाज धालीवाल कांस्य पदक हासिल करिछंती दलगत पर्यायर भारत प्रथम थर पर एशिय क्रीडार गुड़चाला पदक हासिल करपक्ष मुष्टिजोद्धार महिला 65 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान खेलाड़ी को परास्त करी परवीन क्वार्टर फाइनल को उन्नीत होती जाजपुर जिलापा सम्मिलन कक्ष जिलार अनुसूचित जनजाति सर्वांगीन उन्नति स्वतंत्र उन्नयन परिषद बैठक अनुष्ठित नुआपड़ा खड़ियाल एवं खरियार रोड एनएससी विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा बैठक अनुष्ठित गंजाम जिला मुख्य कृषि अधिकारी मनोरंजन राउल नेतृत्व में कृषि विभाग एक टीम जलमग्न धान चाष जमीर स्थिति अनुधान कर विधानसभा आज भारतीय स्टाम्प बिल 2026 समेत दुईट बिल पारित विरोधी हट्टगोल जो आज गृह मुलतवी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगक गति करुछि बंगोपसागर में सृष्ट गभीर अवपात वर्षार राज्यर 37 ब्लक्र 273 ग्राम प्रभावित होता राजस्व मंत्री सूचना प्रकाश पाइला स्नातकोत्तर नीट परीक्षाफल एवं एशिय क्रीडार गुड़चाला प्रतियोगित भारतीय दल को कांस्य पदक आंचलिक संवाद आज शेष होगा
1: आजिर प्रसंग पूर्व भारतर विकासरे पारादीप बंदरर भूमिका आलेख्य पिनाकी महंती उपस्थापनारे मु नीना साहू सामुद्रिक उद्योग क्षेत्र में कार्य करुथुबा लोकंकर कठिन परिश्रम को स्वीकृति प्रदान स्वरूप आज विश्व सामुद्रिक दिवस पालन करा जाउछि प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास शेष गुरुवार एही दिवस विश्वव्यापी पालन करा जाउछि अत्यावश्यक सामग्री परिवहन और विश्व अर्थनैतिक परिस्थिति को त्वरान्वित करिबा नै सामुद्रिक क्षेत्रर गुरुत्व संपर्क में जनसमाज को अवगत कराइबा एही दिवस पालनर अन्यतम उद्देश्य सारा विश्वर शतकड़ा 90% वाणिज्य समुद्र पथरे होइथाय खाद्य औषध जाळेणी एवं शिल्प सामग्री परि अत्यावश्यक जिनिष विश्वर गोटिए कोणरु अन्य कोण को पहुंचाइबारे एहा सबुठारु सस्ता ओ सुदृढ़ माध्यम पलटिछि विश्व सामुद्रिक मानचित्र रे ओडिशार एक स्वतंत्र स्थान रहिछि ओडिशारे थिबा विभिन्न बंदरगुडीक मध्यरु पारादीप बंदर सबुठ

0: के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा।

0: किसान, अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: भागवत श्रीमंत खाली अच्छी श्रीमंत ये भागवती जानी की मो पैसा नहीं थिला।
3: जुहारे जुहारे नवहन भाई।
2: जुहारे
3: दीटा रखिकी जाइछि कुडू मुडिया पानी मुंदे आनी के आसला को खाइ सैलेनी
2: जे मे रखिथिला
3: खा किए रखिथिला
2: जे मे रे के कहिलो
3: मोला जा ए दिने दी दिने आइलेनी बोली मते पासुरी गलो
2: मोला मालो पाटी।
3: हां
2: हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो सब स्मरण अछि एटा को टमेट होइथिला।
3: हां भाई ए संध्या बेले टिके कुडू मुडिया खाइबा को इच्छा हला जे दीटा आनी के आसीछि
2: सब अकलिया हे गला
3: पवन हूँ बिल बाड़ी
2: आड़ी
3: से
2: पचार तेज तो न कह कह सारी कह भागवती
3: जानक
2: सबकि जानक अभावी लोक टे पछे थरक तम पैसा पाओ समस्त नाभ हौ बेल पाचिले कुआर कौन गला
3: भल
2: न
3: यांत्रिक सब जो मिलू जंतर पाती रिहाती रे गोष्ठी माध्यम रे किणीबा आउरी लाभ
2: पाठुटा होची ये आमो ये छोटा जाकर कृषक केमिति आगु को जिबे
3: केमिति सशक्त हेबे
2: भलो रोजगार पाइबे
3: परिवार रो अवस्था केमिति सुधुरिबो
2: सेति पई जो यांत्रिक कृषि।
3: हां भाई आगे आमे जेते बेले चासवास करूथिले ए पुरुणा पद्धति रे बा समय बळु नथिला आइ एने तो केई फुणुका काम होई जाउची
2: पुरी परिश्रम अधिक होतो ना।
3: हां परिश्रम को लाभ बाहर नथिला
2: खर्च भी बढ़ी जाउथला।
3: हां
2: मु कोन कहिबी मिसिनी जदि नागुची
3: हां
2: हमरो परिश्रम कमुची
3: हां
2: समय बळुची
3: सेति पई त आमे गोष्ठी करिए को समय पाइलु।
2: हां
3: हां
2: महिला माने गोष्ठी करिवे लाभ नेबे आ फुनी जो हमरो चासी भाई माने रहिले
3: से मानक पई बा भाई फार्मर्स क्लब बाहर लानी।
2: हां
3: हां
2: संगठित हेबे
3: हेबे
2: सुजोग नेबे संगठित हे रहिबा रिहाती दर रे मिसिनी पाइबा।
3: हां
2: आ लाभ भी भलो होबो समय भी बळिबो आ जहार जेमती को कोन केतेले किछि बळि जाउची ताहे टिके रबहन भाई मने पकेबो कोन
3: सेई त बुलेई मकेई नबहन भाई पाख को आसीले आ
2: भाई
3: पल्ली गीत शुणिले केमिति

0: सब रकम सुविधा मिलुची
1: केठे मिलुची हो एते सुविधा
2: जानिन कि हो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
3: ठिकणा होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
1: ताला जीबा ना की कहजो
2: चलो
4: प्रिय टीपी नदन ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रो बिजुली उपभोक्ता गण ध्यान दियंतु आपनको बिजुली देय निकटस्थ बिजुली कार्यालय अथवा ऑनलाइन रे निर्धारित अवधि मध्ये पैठ करंतु एवं निश्चिंत रहंतु वर्तमान बिजुली बिल फोन पे पेटीएम गूगल पे अमेज़न पे एयरटेल मनी एक्सिस पे किंबा मोबाइल बैंकिंग प्रभृति डिजिटल माध्यम द्वारा पैठ करंतु एवं 3% रियायती पांतु आवश्यक समय सीमा मध्ये एही देय पैठ कले आपन 2% अतिरिक्त रियायती मध्ये पाई परिबे आपनको पाई आपणक सहित सर्वदा टीपीएनओ डीएल
1: हाँ भाई कहरा चालो हो
2: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
1: ओहो माने कथा ना के फिटे के कुहो
2: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेठे सब रकम सुविधा मिलुची
1: केठे मिलुची हो एते सुविधा
2: जानिन बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
3: ठिकणा होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
1: ताला जीबा ना की कहजो
2: चलो
4: प्रिय टीपी नदन ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रो बिजुली उपभोक्ता गण ध्यान दियंतु बिजुली सेवा रे सुविधा पई टीपीएनओ डीएल आपनको पई आनी छंती माई टाटा पावर मोबाइल एप एहाकु आपन गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल स्टोर रो डाउनलोड करि परिबे सेथिरे बिजुली बिल पैठ करी पांतु 5% पर्यंत रियायती बिजुली व्यवहार अभिजोग दाखल निजे मीटर रीडिंग बिल प्रस्तुति आदि सुविधा सबु सेथिरे रहिछि एहा ओडिया एवं इंग्रजी रे मध्य उपलब्ध आपणक पई आपणक सहित सर्वदा टीपीएनओ डीएल
5: निवेदिता बारिक तेबे श्रोता बंधु मोर मध्य आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन
6: आउ बहुत बहुत स्वागत मध्य आमर ई समीपिसुर आसरकु निवेदिता मु काहे कि किछि जानि पारुनी समयटा भरी निष्ठुर ना अति आपणार से सिना चली जाए किंतु ढाली दे जाए जीवन रे अनेक अलिभाताक आउ अनेक स्मृति स्मृति स्मृति स्मृति
5: हाँ अपा स्मृति से केबे चैतारित केबे झांजी पुणी अपा से केबे होसाए तो पुणी केबे कोंदाए
6: हाँ निपितिता स्मृति रे धूलीर आस्तरण जिते पड़िले भी ता केबे लिफेना बरंग मन आईना रे हजिला स्मृति सबु गोटिक परे गोटिए आपे आपे मने पड़ी जांती
5: हाँ अपा मने पड़ी जांती खियाली समय रो बेखियाली ढंग रे तेबे अपा समय कोण आमको छाडुची से परा इशारा दलानी प्रथम चिठीटी को पढ़ीबा को
6: तेबे निवेदिता डेरी नकरी शीघ्र शीघ्र पढ़
5: हाँ अपा प्रथमे चिठीटी देइछंती बांगरीपुसीरु सुमंत शशिरेखा दीप्तिमयी गुडु सोनू एवं राकेश सेमाने लिखिछंती समीपेसु कार्यक्रमर बिना अपा एवं निवेदिता अपांकु आमर शुभेच्छा सह नमस्कार
6: आमर मध्य शुभेच्छा सह प्रति नमस्कार श्रोता बंधु
5: पुणी सेमाने लिखिछंती दिन परे दिन ऋतु परे ऋतु एमिति केते समय बीति जाउछि बदली जाउची समय चक्र रे सबो किछि हेले बदलुनी दुइयपांकर कथाबार्ता बदलुनी रेडियो बाजिबार समय बहुत भलो लागे हमकु रेडियो रे प्रचारित सबो कार्यक्रम अनुचिंता रो चिंताधारा रे जगाई थाए नूतन प्रेरणा गीतांजलि मन रे आनिती आनंद एमिति सबो कार्यक्रम तार स्वतंत्रता बजाय रखिछि आद्यरु ए पर्यंत बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम सबु आमे सुनि आसुछु संध्यार भक्ति गीत सुगम संगीत चासबास विज्ञान वार्ता प्रकृति ओ परिवेश चिठी पत्र अनुरोधरे ओडिया एवं हिंदी कथाचित्रर गीत बहुत भलो लागे आउ ता छडा भलो लागे हेलोबारीपदा परिक्रमा स्वास्थ्य संपद एवं पिलांक कार्यक्रम आमे बेसी भलो पाऊ पौराणिक विषयवस्तु कु नै कार्यक्रम पाला एवं दासकाठिया गीत निश्चय सुनाइबे ओपा रहुछु नमस्कार
6: सतरी श्रोता बंधु आपनको चिठी जेमिति सुंदर अनुरोध मध्य सेमति सुंदर आपनको चिठीर मादकता पूरा पूरी भिन्न आम प्रति आपनकर स्नेह सदिच्छा पूरा बारी हेउची आपनको चिठीरो हां श्रोता बंधु ए जीवन हेउची क्षणिक क्षणिक समय रे आमे बांधी होइछु स्नेह श्रद्धार डोरी रे केते अतुट से बंधन तेबे श्रोता बंधु आम मानकर संपर्कर डोरी सुदृढ करूची आपनको सुंदर सुंदर हातलेखा चिठी सबु आपण माने सब कार्यक्रम को सुनंतु आउ चिठी लिखबा को जम्मार भूलंतु नाही आपणक चिठी त कहूची आपण माने प्रभातरु रात्री पर्यंत प्रचारित सब कार्यक्रम को सुनुचंती बहुत खुशीर कथा श्रोता बंधु बेसी खुशीर कथा आपण माने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि P81 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।

0: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
0: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर

0: 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: The character of war,
3: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
2: With the changing character of war,
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
4: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि

0: कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
1: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
3: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
5: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना, अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने, एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा

0: का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने.
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
0: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
1: Prime Minister Modi said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said, seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
1: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
2: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karma Yogi is to make the government officials citizen-centric.
0: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए. इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है. हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे. टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है.
2: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन कर्मयोगी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन ऑफ अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047 इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर.
3: विकसित भारत

0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था, जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फणी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनी और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म का चित्रगुप्त साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बन पड़ा है। इसका जादू आज भी चाहने वालों के सर चढ़ के बोलता है।

दोस्तों, इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा, ऐसी ही कुछ फिल्में।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

0: आदमी और इंसान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए फिरोज खान को अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। फिरोज खान ने अपना फिल्मी करियर 1960 से शुरू किया फिल्म दीदी के साथ। 1975 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, नाम किया। मैं शादी करने चला ये फिल्म आई थी 1962 में। इसी साल यानी 1962 में आई थी रिपोर्टर राजू।
1: रात झूमती, रात झूमती, दिल को झूमती, दिल को झूमती।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफी साहब का गाया हुआ गाना है, जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है, बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्म आ गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश की।

0: सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।
1: घर

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने 3 फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।

इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत डगाई द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अदीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रेमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का उनका फिल्मी

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सुनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: 愛知名古屋。
1: The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination, and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to the Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Sattam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinaz Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: Bharatiya athletes dikhane lage rang. Ek ke baad ek medal aur ab athletics mein gold ka intezaar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai aur track and field se lagatar achhi khabrein samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezaar hai us sunahre pal ka jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया पूवमा राजू विशाल थेनारसु विद्याराम राज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में जहां विद्याराम राज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाऊ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है साथ ही महिलाओं के 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है अब रुक करते हैं मेंस 100 मीटर की ओर जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की यानी अब मेंस 100 मीटर में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंट

0: 10 पर टिकी है। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स्थ और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया, यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रही। अब रुख करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: Bharti Nishanebaz Anantjeet Singh Naroka aur Parinaz Dhaliwal ki jodi ne Bharat ko Nishanebazi ka 8th padak dilaya. Ye Bharti jodi shotgun ke skid mixed asparda ke final mein 48 mein se 44 nishane lagakar 3rd sthan par rahi aur kaansya padak jeeta. Waise to Bharat aur Dakshin Korea ka score barabar raha tha, lekin tie breaker ke baad Bharat ko bronze se hi santosh karna pada. Ye maujooda Asian Games में शूटिंग में भारत का 8th मेडल है, इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Sattam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1,000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Sattam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Ali Inanto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian

0: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकुवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गई। कजाकिस्तान की मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नवबखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली आसिम को वैंकूवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chautrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीत कर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdene Batbuk and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
3: Mahila vyaktigat se

0: फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल चार में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता है। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल दो में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
2: India's Benedictine Venerson finished 5th in the heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly, but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4 into 100-meter freestyle relay heats, Benedictine Venerson, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes, 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
2: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500 meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh, Laiton Jem, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out on the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the eSports arena with Prerna Sharma.
0: eSports, एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए eSports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने eSports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
0: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशू, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the

0: ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ସାଜନର କେତୋଟି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व तो किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के

0: आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि एमडीआर का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाज धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बारिपदा स्टूडियो घड़ी समय वर्तमान राति 11:05 শুণন্তু আসন্তকালির কার্যক্রম সম্পর্কে কতটি সূচনা আসন্তকালি সকাল 6:05 প্রচার করিব ভক্তিগীতর কার্যক্রম বন্দনা কার্যক্রমের সূচনা শুণবে সকাল 7:00 দিন 12:00 রয়েছে চাঙ্গু গীতর কার্যক্রম কতটি ওড়িয়া চলচ্চিত্র গীত প্রচার করিব আসন্তকালি রাতে 8:00 রাতে 8:30 শুণবে কতটি সুগম সঙ্গীত আজির অধিবেশন এইটি শেষ করুছু আগামীকাল পুনে আপনার অভিবাদন জনাইব প্রাতঃ 5:55 শুভরাত্রি সহ সেতবে যাই বিদায় নেউছু জয় হিন্দ।